आप जी आदि पवित राज देव सुंदर दीवान सजाए गए सात गुरु जी सजे हुए दीवाना दे विच अमृत गुरबाणी का कीर्तन करद्या कथा विचारा करद्या ढाडी वारा राही हार जस सरवण करवाद्या सो दर रह राज साहब जी का जाप करद्या समुचिया सेवावां नभाउंद्या होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां दी खिमा बख्शो जी अगे तो समत बख्शीश करो जी पावन बाणी का भाव संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सुरत शब्द दे नाल जोड़नी संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनिया सिखी सिदक भरोसे की दात बख्शीश करनी खालसा पंथ नूं राज भाग कौमी घर खालिस्तान की दात बंदी सिंघां दी तंदुरुस्ती रिहाई बख्शीश करो सतगुरु महाराज जीओ अज मीरी पीरी दिवस धन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज।

0: है इच्छा है। फिर जेड़ा नाश तो रहत नाम है ना सत नाम, उस नू जपना कर लवो।
1: जानते पाव हो सुख बिसरामो,
0: ते जिस नू जपन दे नाल जीवन अंदर सुख ही सुख वरतेगा। जूना तो नरलेप हो जावोंगे, जांदी वार अकाल पुरख वाहे गुरु दे चरना।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: Agre di dharti te kalna hai, hun tusi Agre

0: महाराज बैठी हुई सी संगत संगत जी एदा ही ते सचे सतगुरु गुरु रामदास महाराज प्रेम दी निगाह नाल अपने गुरसिखां वल वेखदे ने। गुरसिखां वल वेख के आखण लगे, भाई गुरसिखो तुसी मैनू जानो बद प्यारे हो, बड़े मेरे प्यारे हो।
1: मनुख जन्म दुलभ को तारे,
0: ए जेड़ा मनुखा जीवन है ना, एक गल याद रख लियो, ए बड़ा ही बेशकीमती है। कबीर, मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारह बार, ज्या बान फल पाके भोए ग्रह बहर न लागे डार। जिवें टुटे हुए रुखां नालों फुल मुड़के वापस नहीं लगदे, एदा ही जेड़ा मनुखा जीवन है जदों लंघ गया सो लंघ गया मुड़के औखा ही प्राप्त हुंदा है। धन गुरु रामदास जी आखदे, तुसी मेरे प्यारे गुरसिख हो, मनुखा जीवन प्राप्त होया इस नू सांभ लवो।
1: हर सिमरन बिन ब्रिथा ना खोवहो,
0: भाई गुरसिखो हरी दे सिमरन तो बिना वेख्यो किते बिरथा ना चलिया जावे। तुसी सिमरन ना करो, एदा ना होवे के मनुखा जीवन प्राप्त होया है सिमरन करन वास्ते। भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरा कित न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ए जेड़ा मनुखा जीवन प्राप्त होया है ना, वेख्यो किते सेवा सिमरन तो

0: KRPI ರೇಡಿಯೋ ತೆ ತುಸಿ ಸುನ್ ರಹೇಸಿ ಲೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಗುರು ನಾನಕ್ ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಸಾಹಿಬ್ ಸ್ಕಾಟ್ ರೋಡ್ ಸರಿ.
1: ಯುಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು KRPI 1550 ರೇಡಿಯೋ ಫರ್ನ್ಡೇಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್.
2: ಏಕ ಓಂಕಾರ ಸತ್ನಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಪುರುಖ ನಿರ್ಭವ ನಿರ್ವೈರ್ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತ ಅಜೂನೀ ಸೈಭಂ ಗುರುಪ್ರಸಾದ. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਤਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਣ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ. ਔਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਦਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ. ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਪ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਟੁੰਬ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ. ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ. ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲੋਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ. ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ. ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਗਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਭਗਤ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ. ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਦੀ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਈਆਂ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. ਜਗਤ ਤੇ ਸੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਸੁਦਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੰਨਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जांदा है उहदे च मां है पिता है? साहब कहण लगे, हाँ जिहड़ा परिवार मेरे नाल जांदा है उहदे च मां भी है। तो हुण ते हैरान होईआं ते खिड़खिड़ा के हस भी पईआं, पुत्तर तू वाकई सुदाइयां वाली गल करदा, वाकई पगलियां वाली गल करदा, मैं ते कदी नाल नहीं गई, मैं ते इत्थे तलवंडी दे च ही रही हां, पर तू कहना मेरे नाल है मां। फिर सोची पै के कहिंदियां ने, किधरे ऐसा ते नहीं तू मेरी याद नाल लै जांदा, ते यही आखना चाहुंदा होवें ते मैं समझदी ना होवां। साहिब कहण लगे, हां कहना ते कुछ मैं ऐसा चाहना मां, अजे भी तू नहीं समझी। कहिंदे ने, भगतां तो ब्रह्म ज्ञानियां तो चार तरह के जड़े मनुख ने वो कोई लाभ नहीं उठाते, एक ते मां बाप, दूसरे शरीक, तीसरे जिगरी दोस्त और चौथे दुश्मन, ये कोई लाभ नहीं उठाते। ये उन्हां दी गल नूं समझना भी नहीं चाहते और उन्हां तो लाभ भी नहीं उठाना चाहते। तो ममता दी मारी हुई तृप्ता ममता दी दृष्टि नाल गुरु नानक नूं वेखदी है, और गुरु नानक इस दुनिया तो बहुत उच्चे अगां दी गल कर रहे हैं, मां मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल आउंदा। क्या उस परिवार विच मां भी है? हां मां भी है। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया, नानक जी दसो उस मां दा नां की है जो नाल जांदी है? तो सतगुर माता दा नाम दसते हैं, परिवार दे सारे फरदां दा नाम दसते हैं, और ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर गौड़ी राग विच दूसरे नंबर ते आया है। सतगुर कहिंदे ने, माता मत पिता संतोख है, सत भाई कर एह विसेख। मेरी जो माता है वो शुभ मत है, चंगी मत है, ये कदम कदम ते मेरी रखिया कर दी है, मेरी हिफाजत कर दी है। असी उसनू यतीम कहिंदे हां जिस दी मां मर जाए, पर गुरु नानक कहिंदे नहीं, उसनू यतीम ना आखो जिस दी मां मर जांदी है, यतीम उसनू आखो जिस दी मत मर जांदी है। जिस दी मां मर जाए वह जिंदा रहण दे वसीले लभ लैंदा है, ठोकरां तो कई दफा बच भी सकदा है, पर जिस दी मत मर जाए वह ते कदम कदम ते ठोकरां खांदा है। बुद्धिहीन मनुख कदम कदम ते ठोकरां खांदे ने। तो साहिब कहिंदे ने कि चंगी मत, श्रेष्ठ मत, उत्तम विचार, उत्तम फिलसफा, प्रभु चिंतन, ये जिहड़ी चंगी मत है ये मेरी मां है और मेरे नाल है और हर कदम ते मेरी हिफाजत कर दी है, मेरी पालना कर दी है, मेरे ते ममता डुलांदी। तो ठीक है, चंगी मत ये मां होई, पिता कौन है? संसार दे जितना सारा अनर्थ चल रहा है ये मत दे मरण नाल चलता है। जब मत मर जाए तो मनुख गुंडा हो जाता है, बदमाश हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, चोर बन जाता है। दुनिया दे जिस जिस दी भी मत मर गई है उन्हां मनुखां दे कारण बड़ा अनर्थ है, जिन्हां दी मां मर गई है उन्हां दे कारण करके संसार नूं कोई हानि नहीं है, बल्कि उते विचारे दया दे पात्र ने। पर जिन्हां दी मत मर गई है वो ऐसे यतीम ने, कई दफा समुची मनुखता नूं यतीम बनाउण दे च भागी बन जांदे ने। तो माता मत पिता संतोख, साहिब कहिंदे ने मेरे पिता दा नां है संतोख, ये हर हालत विच मैनूं खुश रखदा है। लोभ ते संतोख दी व्याख्या दो लफ्ज़ां विच करनी होवे तां इतनी है, जो कुछ है जैसा है सब ठीक है, ये संतोखी दी भाव दशा हुंदी है। जो कुछ है जैसा है परवान है, कबूल है। लोभी दी मानसिक दशा की है, जो कुछ है जैसा है कबूल नहीं, जैसा परिवार है, जैसा संसार है, जैसे मां बाप ने, जैसी धन संपदा है, जैसी मेरी प्रलब्ध है, ये प्रवान नहीं, ये कबूल नहीं। ते जद कबूल नहीं तो दुखी होवेगा, बेचैन होवेगा। आम कहावत है कि लोभी बंदा फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा है, संतोखी बंदा अंगारियां ते बैठ के भी मस्त रहिंदा है। और इस दे सबूत मिले ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुराए ने, प्रभु दे गीत गाए ने। संतोखी मनुख हर हालत विच आनंद विच होवेगा, और लोभी मनुख हर हालत विच पीड़ित होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। साहिब कहिंदे मेरे पिता का नाम है संतोख। एक गाथा चेते आई है, फाते आजम सिकंदर कहिंदे ने जद हिंदुस्तान नूं फतेह करन वास्ते आया लंबी चौड़ी सेना लैके, तां जिस वक्त दरिया सिंध अबूर करन लगा, सिंध दे तट दे ते एक अजीब मस्त फकीर लेटिया होया सी रेत विच। सेना सारी दरिया पार कर चुकी सी, आखरी टुकड़ी विच सिकंदर आप सी। उस मस्त फकीर नूं वेख के रुक गया। बचपन तो ही सिकंदर फकीरां दा मुश्ताक रहा। नेड़े चला गया, रेत विच लेटिया होया ए महात्मा वेखदा है सिकंदर नूं, पुछ बैठा, सिकंदर कित्थे चले हैं, किहड़े पासे गमन कीता। सिकंदर कहण लगा, फकीर साईं, मैं हिंदुस्तान फतेह करन चला लंबी चौड़ी सेना लेके। तां फकीर कहण लगा, ठीक है, ए दस जद तू हिंदुस्तान फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। आखण लगा, फिर मैं हथ दे उत्ते हथ धर के थोड़ी बैठना, मैं कोई होर मुलक फतेह करांगा। फकीर कहण लगा, जे तू होर मुलक भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। कहिंदे ने जितने चिर तक सही जवाब ना मिले सवाल अपनी थां ते खड़ा रहिंदा है। समाधान सही ना होवे तो समस्या अपनी थां ते खड़ी रहिंदी है। सिकंदर हैरान होया, सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, मैं जो भी जवाब देना उहदे नाल सवाल मिटदा नहीं इस फकीर दा। तो उस फकीर ने कहा, जे कल्पत कीता होया तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। तां सिकंदर कहण लगा, फिर मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा, मैं बैठे नहीं रहना, मैं सुस्त आदमी नहीं हां, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहण लगा, ठीक है, पर सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, जे तू होर मुल्क भी फतेह कीता फिर की करेंगा। गुस्से च आके सिकंदर कहण लगा, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, जमीन दा एक इंच खिता भी नहीं रहण देंगा जो मेरे कब्जे विच ना होवे, जो मेरी पकड़ विच ना होवे, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। सिकंदर सोचदा हुण सवाल खत्म, पर नहीं, फकीर फिर बोलिया, अच्छा सिकंदर ये दस, जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। ये ते खाबो ख्याल विच भी नहीं सोचिया सी सिकंदर ने, किस तों अगां भी कोई जवाब देना पेगा। सिकंदर, जब तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। तो फिर सिकंदर कहण लगा, फिर मैं अपने घर जावांगा, आराम करांगा, यूनान वापस जावांगा, आराम करांगा। फकीर कहण लगा, तू 100 पुआड़े पाके आराम करेंगा, ते असी आराम कर रहे हैं, असी रेत विच लेटे हैं, असी आराम करदे पए हां, जे तू आराम करना ते आ इत्थे लेट जा, असी आराम दे चां। तू 100 पुआड़े पा के आराम करेगा ते असी आराम दे चां, इत्थे तू स्वयं अंदाजा लगा तू अगे है कि असी अगे हाँ। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान तो वापस जांदे होया सिकंदर रस्ते विच ही दम तोड़ गया, उन्हूं आराम नसीब ना होया। मनुख की कई दफा सारी भज दौड़ आराम वास्ते आउंदी है, ते आराम उसे दिन नसीब आउंदा है जद चार मनुख चुक के चिता ते रख दें दिन। इस तों पहले आराम कित्थे, भज दौड़ है आराम वास्ते, पर भज दौड़ मनुख दे कोल रह जांदी है, आराम नहीं रह जांदा। पर जे मन दे संतोख होवे ते ऐसा मनुख हर वक्त विश्राम विच, ऐसा मनुख हर वक्त आराम विच है, उदी भज दौड़ विच भी कुछ विश्राम होवेगा। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, संतोख मेरा पिता है, मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम विच रखदा, आराम देंदा, सुकून देंदा। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एह विसेख। तो तृप्ता जी ने पूछया, नानक जी, ए ते गल समझ दे च आ गई कि जो मत है श्रेष्ठ मत है ये थोड़ी मां है, जो संतोख है ये थोड़ा पिता है। पर परिवार विच सिर्फ मां बाप ते नहीं होंदे, पत्नी भी होंदी है। असी सुलखणी नाल थोड़ा व्याह रचाया सी, थोड़े बच्चे भी हैं। जिहड़ा परिवार थोड़े नाल जांदा है क्या उस दे च पत्नी है, क्या उस दे च बच्चे हैगे ने? साहिब कहिंदे ने हां। सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान, सरम सुरत दोए ससुर भय करणी कामण करमन लै, करणी भगती उच्चा इखलाक आचरण। ये भगती मेरी कामण है, मेरे नाल रहिंदी है, अठे पैर मेरे नाल रहिंदी। भगती रूपी कामण दा जन्म कित्थों होया? साहिब कहिंदे ने साहा सरम सुरत दोए ससुर भय। सरम मेहनत, सुरत स्याणप विचार टिकाओ एकाग्रता, मेहनत रूपी सोहरा ते सुरत रूपी सस दे संजोग तो एक लड़की दा जन्म होया जिसका नां है भगती। साहिब कहिंदे ने ए मेरी कामण है, ए मेरी स्त्री है। इसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है, निज भगती सीलवंती नार रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ तिचर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया गुर आणी घर में ता सर्ब सुख पाया। भगती नू नार आख्या है साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी। कहिंदे ने ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। ज्ञान दा जन्म तर्क तो है, संशय तो है, भगती दा जन्म श्रद्धा तो है। इस वास्ते असी अक्सर देखते हैं कि स्त्री जगत विच श्रद्धा प्रधान होंदी है, पुरुष जगत विच ज्ञान प्रधान होंदा है। पर श्रद्धा तो हीणा ज्ञान अधूरा है और ज्ञान तो हीणी भगती भी अधूरी है। दोहां ने संपूर्ण होना है। भारत दे ऋषि मुनिया ने ये चंगे बोल बोले ने कि पुरुष भी अर्ध अंग है, स्त्री भी अर्ध अंग है, दोवें अर्ध अंग ने। शरीर करके आकार करके तो ये अर्ध अंग हैं, पर विचार करके सूक्ष्म देही करके भी अर्ध अंग है। जितने चिर तक पुरुष को श्रद्धा ना मिल जाए पुरुष अधूरा ही रहिंदा है। तर्क ते नास्तिकता दे जन्मदाते पुरुष ने, और अंधविश्वास से भटकते हुए जिहड़े मनुख ने कहिंदे ने इसना दे तादाद स्त्रियों की ज्यादा होवे, क्योंकि श्रद्धा है ज्ञान नहीं, पुरुष कोल ज्ञान है श्रद्धा नहीं, दोवें अधूरे रह जाते। ज्ञान अख है, श्रद्धा पैर है। हुण चलण वास्ते पैर होवन, वेखण वास्ते अख ना होवे मनुख भटक जाएगा। वेखण वास्ते अख होवे चलण वास्ते पैर ना होवन तां वी पहुंचना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। जद किसी मनुख दे अंदर चाहे वह स्त्री है ते चाहे वह पुरुष है, ज्ञान ते भगती दोहां दा प्रवेश हो जाए, दोहां दा अवतरण हो जाए, वह मनुख पूर्ण पुरख हो जाता है, चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर भगती भी है, उसके अंदर श्रद्धा भी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने माता मत मत विचार उज्जवल मत ज्ञान का पहले जिक्र ही कर दिता है। सरम सुरत दोए ससुर भय करणी कामण करमण लै, मेहनत मुशक्कत ए मेरा सौरा है, भाव मैनू अपनी मेहनत ते भरोसा है, मैनू अपनी मुशक्कत ते भरोसा है। गुरु नानक की दुनिया सुस्त नहीं है, आप मुशक्कत नू बड़ी प्रधानता देंदे ने। उदम करेंदिया जीव तू कमावदिया सुख भुंच, ध्यावदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। जिवें उदम करके ही धन कमाईदा है, उद्यम करके ही धर्म कमाईदा है। मुफ्त देच धन नहीं मिलता, मुफ्त देच धर्म भी नहीं मिलता। हो सकता है धन मुफ्त देच भी मिल जाए, धर्म कतई मुफ्त देच नहीं मिलता, कमाना पैंदा है, लाजमी कमाना पैंदा है। असी देखते हैं पिता का कमाया हुआ धन पुत्र नूं मिल जाता है, कई दफा दादे का कमाया हुआ धन पोतरे नूं मिल जाता है, पर धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, किसी का कमाया हुआ नहीं मिल सकता। इस वास्ते संसार देच धन वधदा जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है, क्योंकि धन तो दूसरे का भी मिल सकता है। प्यो का धन पुत्र नूं मिल गया, दादे का धन पोतरे नूं मिल गया, धन की लाटरी भी निकल आउंदी है, धर्म की लाटरी नहीं निकलती। धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, आप कमाना पैंदा है, मेहनत करके कमाना पैंदा है, और ए निजी संपदा खुद निजी हत्थां नाल संग्रह करनी पैंदी है। इस वास्ते संसार विच धन वधदा जा रहा है और दिन ब दिन धर्म घटदा जा रहा है। इत्थे धर्म जो है प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकदा और पुत्र भी पिता नूं नहीं दे सकदा। धन ऐसा है कि पुत्र ने कमाया वह पिता की झोली च पा सकदा है और पिता ने कमाया वह पुत्र के हत्थां च दे सकदा है, पर धर्म स्वयं कमाना पैंदा है। प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकदा, पुत्र पिता नूं नहीं दे सकदा। इसका इतिहासक सबूत है, गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश से कि मेरा जिहड़ा वड्डा पुत्र है पृथ्वी चंद, यह भी नाम का रसिया बने, यह भी बाणी पढ़े, यह भी परमात्मा नाल जुड़े, पर नहीं, वह झगड़ता ही रहा, वह नास्तिक ही रहा, वह कलेश पांदा रहा। उहदे संबंध च महाराज दे बोल भी ने, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों जगरत पाप। वह लड़दा ही रहा, झगड़दा रहा, इच्छा ख्वाहिश होने के बावजूद भी गुरु रामदास जी महाराज दी पृथ्वी चंद भगत ना बन सके, संत ना बन सके, धर्मी ना बन सके। इत्थे पिता पुत्र दी झोली च नहीं पा सके। दूसरे पासे असी देखते हां प्रहलाद दी बड़ी कोशिश सी कि जिहड़ा राम दा रस मेरे कोल है, जो धर्म मेरे कोल है, वह मेरे बापू कोल भी होवे, वह मेरे पिता कोल भी होवे, पर नहीं, हरनाकश इस दौलत तो वांझा ही रह गया। जो नाम दी दौलत प्रहलाद कोल सी, ओ हरनाकश कोल नहीं सी। चाहते सन प्रहलाद कि मेरे बापू कोल भी होवे, पर गल नहीं बनी। चाहते सन गुरु रामदास जी महाराज मेरे पुत्र कोल भी होवे, पर गल ना बनी। इत्थे एक दूजे नूं ये दौलत दित्ती नहीं जा सकती, स्वयं कमानी पैंदी है, आप कमानी पैंदी है। मनुख उसे दिन पूर्ण बनता है, धार्मिक तौर पर उसे दिन धनवान बनता है, जिस दिन इसके कोल ज्ञान भी होवे और श्रद्धा भी होवे, अंदरों पूर्ण हो जाता है। तो साहब कहते हैं, मेहनत मुशक्कत ये मेरा सौरा है, सुरत मेरी सस है, इन्हों के संयोग तो एक लड़की का जन्म होया जिसका नाम है भक्ति। साहब कहते हैं वो मेरी कामण है, करनी कामण है कर मन लै। त्रिपता जी बोल उठे, नानक जी सुलखणी दे नाल व्याह असी कराया सी, भक्ति रूपी कामण नाल व्याह किसने कराया और कदों होया? गुरु नानक इस दे संबंध च भी दसते हैं। साहब कहते हैं, साहा संजोग व्याह विंजोग, सतपुरशां दा जो संजोग होया, जो सतसंग नसीब होए, ये मेरी मंगनी हुई सी। सतपुरशां दी सोबत च मैं बैठा तो भक्ति नाल रिश्ता जुड़िया, सतसंग दा संजोग मेरी मंगनी हुई सी, ते जद विकारां दा वियोग हो गया, दुराचार निकल गए, दुष्कर्म ढह गए, ता मेरा व्याह हो गया, ये मेरा व्याह हो गया। दुष्कर्म दे खत्म होंदिया, गलत विचारां दे खत्म होंदिया, गलत कर्म दे मिटदिया ही भगती प्रगट हो गई, भगती मैनू मिल गई। साहा संजोग व्याह विजोग, सतपुरशां दे संजोग नाल रिश्ता जुड़िया सी। गुलिस्तान दे चिक बोल बड़ा कीमती है, ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी दी ए महान रचना है गुलिस्तान। कहिंदे ने उह इक दिन बैठे सन, हाथ धो रहे सन मिट्टी दे नाल, कोल बैठे उन्हां दे शागिरद, उह पुछदे ने, उस्ताद जी थोड़े चेहरे ते हर वक्त मस्ती रहिंदी है, रौनक रहिंदी है, तुसी खुश रहिंदे हो, आनंद दे च रहिंदे हो, जदके अठे पैर अपने आप नूं खुश रखना बड़ी औखी गल है, पर तुसी अठे पैर खुश रहिंदे हो, अठे पैर प्रसन्न रहिंदे हो, अठे पैर खेड़े ते मस्ती दे च रहिंदे हो, आखिर थोड़े कोल ऐसी की चीज है, सानू भी ए राज दसो। तो कहिंदे ने जो मिट्टी हत्थां दे सी शेख सादी दे, उस मिट्टी नूं आप सूंघण लगदे, काफी देर तक सूंघदे रहे। शागिरद कहिंदे रहे, उस्ताद जी सानू दसो कि थोड़े कोल इतनी प्रसन्नता किस तरह है, इतना खेड़ा किस तरह है। शेख सादी कहण लगे, थोड़ा सवाल मैं मिट्टी ते कीता है, मिट्टी बोलेगी मैं दसांगा। हैरान ने विद्यार्थी, पर बड़ी सुंदर नज़म दे राही विद्यार्थियों नूं समझाया है ईरान देश प्रसिद्ध संत शेख सादी ने। गिले खुशबू दर हुमाम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਫਤਮ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਯਾ ਅੰਬੀਰੀ ਕਿ ਅਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਸਤਮ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਹੈ, ਅੰਬੀਰੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਤਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਅੰਬੀਰੀ ਗਜ਼ਨੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਚ ਜੋ ਅਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਗੁਫਤਮ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਯਾ ਅੰਬੀਰੀ ਕਿ ਅਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਸਤਮ। ਦੱਸਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਹੈ, ਅੰਬੀਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੀ ਬਾਉ ਗੁਫਤਾ ਮਨ ਗਿਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੂਦਮ ਵਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਤੇ ਬਾਗੁਲ ਨਿਸ਼ਸਤਮ। ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੀ ਐ ਸ਼ੇਖ, ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਬਾਉ ਗੁਫਤਾ ਮਨ ਗਿਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੂਦਮ ਗਿਲੇ ਮਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਵਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਤੇ ਬਾਗੁਲ ਨਿਸ਼ਸਤਮ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਲੇ ਹਮ ਨਸ਼ੇ ਦਰਮਨ ਅਸਰ ਕਰਦ ਵਗਰਨਾ ਮਨ ਹਮਾ ਖਾਕਮ ਕੇ ਹਸਤਮ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨੇੜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਮਕ ਦਮਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ,

0: पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता, ईश्वर नूं जन्म दिता है। हैरान हो गए कि ईश्वर के नाम भगत लोग रखते हैं, हुण मां बाप बच्चों के नाम रखते हैं पर भगत रब के नाम रखते हैं जो जगत पिता। यह गल उल्टी है, मां बाप बच्चों नूं जन्म दे दें, भगत रब नूं जन्म दे दें। साधु सत्तम जाणो नानक प्रीत कारणे, गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना, अगर साधु ते भगत ना होवन तो ईश्वर की होंद का कोई पता भी नहीं चलेगा। ये ही प्रगट करते हैं, उसकी होंद नूं, उसकी असलीयत नूं, उसकी वास्तविकता नूं जगत के सामने रखते हैं। तो सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है। कहो नानक जोग मैं इसे ही परिवार जोगा। मुख्तसर इस परिवार की तफसील, गुरु नानक का कहना है, जिथे सत्संग होवेगा उथे चंगी मत होवेगी, जिथे चंगी मत होवेगी उथे संतोख होवेगा, जिथे संतोख होवेगा उथे अपनी मेहनत ते भरोसा होवेगा, जिथे अपनी मेहनत ते ही भरोसा होवेगा, प्रालभत ते भरोसा होवेगा उथे सुरत देच एकाग्रता होवेगी, जिथे सुरत देच एकाग्रता होवेगी उथे विकारां दा त्याग होवेगा, जिथे विकारां दा त्याग होवेगा उथे भगती होवेगी, और जिथे भगती होवेगी उथे ज्ञान होवेगा, और जिथे ज्ञान होवेगा उथे परमात्मा आप होवेगा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch Program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch Program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
1: है।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय

सम्मान योग उपस्थित गुरु रूप साध संग जीओ गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखने की एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है, लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान किया, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़े आवे है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही हुलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदन, अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा, अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है, फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो आरंभ होती है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक की व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी का, पता है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नु समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੋ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਏਕ ਵਕਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਵੱਜਾ, ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੋ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਤਵਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नु मत्था टेक दिए। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दिए। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिए, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। ये गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवे तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थीए जा हृदय कुछ उदे कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है। जिस दे अगो तू झुक रहे है ना तेनु समझ, ना तेनु बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीस निवाइए क्या थीए जा हृदय कुछ उदे जा। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेट करने की जाच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करता है, गुरु अपने विचार इसनू दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की, अपने विचारां नु भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिरी ना चारां दा मजमूआ ही तन है। और है भगत कबीर कहंदे ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस उपरले राख्यो गुमान। है कि तेनु हड्डियां दा माण है, तेनु मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। जैसे असी वख वख रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नू नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्मे ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मा दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वख वख दे दिता। किसे नू गोरा, किसे नू काला, किसे नू सांवरा, किसे नू लाल, किसे नू जर्दी मायल, किसे नू गेहूआ रंग, एक रंग नहीं है। तुद वेखी जगत उपाया, परमात्मा दी पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेका रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंके उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है।
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े होया मांस, और मांस दते लिपटी हुई मिंज, और मिंज दते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार सोचनी चितवनी ते आहंग, इसनू कहिंदे ने मन बुद्ध चित आहंग, मन बुद्ध चित अहंग। इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे ने, चतुष्टा अंतःकरण। चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, ते किस विचार नू तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया, बुद्ध। ते जद मनुख किसे नू याद करदा है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, ओही मन बन गया चित्त, मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है अहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये अहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन, मन बुद्ध चित अहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हाँ, एक निर्मल हंकार भी आउंदा है। पहले मनुख तन दा माण करदा है, धन दा माण करदा है, जोबन दा माण करदा है, प्रभुता दा माण करदा है, परिवार ते माण करदा है, जात ते माण करदा है, कुल ते माण करदा है। लेकिन जद हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते माण करदा है, बाकी किसे ते माण नहीं करदा, गुरु ते माण करदा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हे सच्चे, तू मेरा माण है, तू मेरा तान, मैनु हुण तेरे ते माण। तन ते माण है, धन ते माण है, जोबन ते माण है, प्रभता ते माण है, परिवार ते माण है, कुल ते माण है, जात ते माण है, ये ते महिला है, हंकारी है, यही लोकां कोल है। कोई जोबन दा माण करदा है, कोई प्रभता दा माण करदा है, कोई धन दा माण करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दा बड़ा सुंदर प्रमाण, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा माण, जोबन दा माण, प्रभता दा माण। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, माण तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी माण आउंदा है उन्हां कोल, किस ते? उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने, माण मांगो ताण मांगो धन लखमी सुत दे, हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल ताण नहीं, उहदे कोल माण कहदा, और जो निताणा है निमाणा है, उह ते मरण तो पहले मर गया, उह ते कबर ते चला गया, उह ते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, और मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं, कमजोर कहिंदे ने उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसे तरह दी भी कोई ताकत नहीं, ना धन दा जोर, ना जोबन दा जोर, ना कुल दा जोर, ना जात दा जोर, तो जोर किस दा? जोर हुण प्रभु दा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हुण तू मेरा तान है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही माण है।
परमात्मा निर्मल है, उसका माण भी निर्मल है, बाकी हंकार मैला है। विचार जब बदलते ने तो हुण मैं इस करा मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचनी विच की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदिआं संसार बदलदा है, सोचनी दे बदलदिआं ही जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदिआं, यादां दे बदलदिआं ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदिआं ही सब कुछ बदलदा है।

0: ਤੇ ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਮੋਹ, ਲੋਭ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਮੋਹ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਮ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਵਹੀ ਇੱਕ ਰੈਸੀ ਜੋ ਸਾਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੰਕਾਰ, ਫੋਕਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਵੱਜਾ, ਜੋ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਾਧਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚ ਮਾਹੋ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सुनदिया ही पाप नाश हो जाने, सुनदिया ही गुरु का शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सुनदिया ही गुरु की विचार अंदर प्रवेश करेगी, अंदरों अहंकार निकलेगा, अंदरों दुख निकलणगे, अंदरों संताप निकलणगे। सुनना ही तो औखा है, और सुन ओही सकेगा जिसका पूरा ध्यान एकाग्र होवे। इधर भटकदा पिया, इधर भटकदा पिया, उधर वेख रहा है, उधर वेख रहा है, इतों स्पष्ट है इहदा ध्यान भी भटक रहा है। इन्हें की सुनना है? सुनने लई ध्यान की पूरी एकाग्रता चाहिए है। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है, दूसरा सुन रहा हुंदा है, ते सुन वाला अचनचेत कह देंदा, मित्र ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी जब बोलन वाला इतनी उच्ची उच्ची बोल रहा है? तो कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। बिना ध्यान दी एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द दा अंदर प्रवेश होना कठिन है, और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखां दा बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है, इतना पावन हो जाता है कि 68 तीर्थ भी उस तो सदके किए जा सकते हैं। सुनिए 68 का इशनान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश कर दी है, वो पच के मिंज बन दिए, खून बन दिए, मांस बन दिए, शरीर की शक्ति बन दिए, तवानाई बन दिए, इंद्रिया का बल बन दिए। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जब कोई सुनेगा, और सुनेगा ओही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र, नहीं तो कौन सुनता है? शौकिया लोकी अपने घर देच भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे देच रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने कि जे सुनना ना पै जाए। कौन सुनता है? कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकदा है, मित्र नूं सुन सकदा है, पत्नी नूं सुन सकदा है, पति नूं सुन सकदा है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता विनिमरता तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कदन तालमेल नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा। ताल तबला सुर ताल दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है? गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहिंदे ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसे दिन कीर्तन सुनदे आ किसे नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखिया कीर्तन दा रस ते किसे नूं विरले नूं ही आउंदा है, लोक सुरां दे आवाजां दे अगले दे रंग रूपे च या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जांदे ने, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोगों की स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए, सच दी विचार फोकियां साखियां नहीं। और जिहड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी, उस दी सच्चाई है कित्थे, हकीकत है कित्थे? खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश करदे ने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। ये ते पहली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, ओ आकार रहत है, ओ आकार वाला भी है, ओ सरगुण है, ओ निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओ ही, कलाधार जिन सगली मोही, ओ निर्गुण रूप दिच एक है, ओ सरगुण रूप दिच अनेक है, ओ एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दिच बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल, और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग, एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने, और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग, आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फूल जैसा दूसरा फूल नहीं है। एक दरख्त नू जे 1000 फल लगे ने, 10000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नू लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने, तो एक जैसे ने कतई नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दिच आवे भावे ना आवे, वह फर्क साड़े तौल दिच आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा विच रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा और दूसरा बनाण लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज सड़ी पकड़ दे, सड़ी समझ दे आ गए ने, इतने। इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे चने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनंग। सूरज घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बदता है, घटता है, ते मिटता है। ये तिने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारिया ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं, ते अपनी जवानी हंडा चुके, बुढ़ा हो गए। 40 लख टन वजन 1 सैकंड दे चिस्ता घट रहा है। घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग। गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नु ही महापरले कहते हैं। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे हैं, भावें अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दौरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नू ना लईए, लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म लै रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वख वख है, पर इस सारी अनेकता दे रमे आया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों है? धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने, एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या तो बच्चे खेडते ने, खेल या परमात्मा खेडता है, बाकी खेल नहीं है। जिस दिच जित होवे, जिस दिच हार होवे, वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दिच नफा होवे, जिस दिच नुकसान होवे, वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड़ियां खेलां ओलंपिक मेरी दृष्टि, वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, कहिंदे फलाना मुल्क हार गया है, फलाना मुल्क जीत गया है, ये जंग है या कि खेल है? और जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, सोगवार होके आंदे ने, रोंदे हुए आंदे ने। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी जीत जान, नचदे हुए आंदे ने, मुल्क दे चुनां दा स्वागत आंदा है, उन्होंने इनाम मिलते हैं, जैसे किसी मुल्क नू जीत के आए ने, और वाकई नाम भी लिया जाता है, फलाना मुल्क हार गया, फलाना जीत गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनू मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं। जिस दिच जीत है, जिस दिच हार है, जिस दिच हार दी घृणा होवे, जिस दिच हार दी बेइज्जती होवे, जिस दिच जीत दा तकब्बुर होवे, उन्हों खेल आखण की कई लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिदे च नुकसान दा दुख होवे, जिदे च नफे दी खुशी होवे, उन्हों खेल आखण की लोड़ की है? ये ते धंधा है। खेल बच्चे खेडदे ने, खेल परमात्मा खेडदा है। दरिया दे कंडे ते, सागर दे तट ते बच्चे खेल पे खेडदे ने, रेत दे महल खड़े कर रहे ने, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हां बच्चियां ने इन्ना महलों में रहना है, जो इतनी मेहनत नाल पे बनाते हैं, इतनी एकाग्रता नाल बना रहे ने? नहीं, खेल है, पर बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे हैं। महल बन गए ने, इधरों सूरज डुबण वाला है, शाम हो गई है, घर की याद आई है। हसदियां हसदियां रेत दे महल खड़े किए सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे ने। बड़ी एकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे ने। जब बनाण लगे सन खुश हसदे हसदे, अज मिटाण लगे ने खुश हसदे हसदे। खेल है, तंदा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिटाना भी खेल सी। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी की नहीं माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा की दुनिया च भी ओदी दृष्टि जी सब कुछ खेल। जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद दे नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं। खेल तमाशा, सुंदरता कुरूपता दे च बदल जाती है, हासे रोणियां दे च बदल जाते हैं। फूल खिलता है मुरझाने का तहैयल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हासियां दे थले परेशानियां छुपिया पई ने, दुख संताप जो है छुपे पे ने, जन्म दे थले मरण छुपया पे है। खेल तमाशा, बनाण लग्या प्रसन्नता है परमात्मा नो, बिठाण लग्या भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जांदा है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जांदा है। खेल संकोचे तो नानक एक है, जैसे खेल नु संकोचदा है एक, ते जद खेल खेलन लगदा है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। इस अनेकता दे जिड़ा एक नू वेख लवे, एक नू समझ लवे ओ पवित्र है। उसनू किसी नाल घिरना नहीं होवेगी, किसी मुल्क नाल, किसी जात नाल, किसी व्यक्ति नाल, किसी कौम नाल, किसी धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नू वेख के भी उस दे अंदर झरनाट वज जाएगी, मंदिर नू वेख के भी उस दे अंदर खुशियां जागनगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलों लंघिया होई उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगा पैदा होणगियां, भेद ते मिट गए। उहनू दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है, अनेकता उसका खेल है, वास्तविक वह एक है। सूरज एक है, किरणा अनेक ने, सागर एक है, लहरा अनेक है। जिसनू लहरा नाल नफरत है उन्हों सागर नाल भी नफरत है, जिन्हों किरणा नाल नफरत है उन्हों सूरज नाल भी नफरत है, जिन्हों अनेकता नाल नफरत है उन्हों एक नाल भी घिरना है। उन्हों एक दी कोई समझ नहीं, उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, एक वस्तु बूझे तो होवें पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। जे एक नू समझ जाए तो पावन है, पवित्र है, ते जे नहीं समझया तो अपवित्रता दी ढेरी। भट्टा ने इस संबंध च एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा, एकाग्रता बख्शनी। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया, दो तीन चार पांच नहीं, एक। सिर्फ एक नू पढ़िया ही नहीं, मन विच भी एक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहंदे ने, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न तैयार, दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं, पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़ता। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसी जीवन भर पढ़िया एक नो, सिर्फ पढ़िया ही नहीं मन विच वसाया एक नो, तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए न जाणियो। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक नो, थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलते हो उन्हां च एक प्रगट आउंदा, अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी एक, थोड़े अखां दे च भी एक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे, उसके व्यवहार तो, उसके बोलन तो, उसके वेखण तो, उसकी तर्ज जिंदगी तो, और किस तरह। हो सकता है गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकता है मंदिर विच रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उसके आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन विच निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास थोड़ी रसना ते इक, थोड़े नेत्रां दे चिक, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए ना जाने। तुसे एक तो बिना दूजे नू नहीं जानदे, थानू एक ही एक दिखाई देंदा। सारियां किरणां दे इक्को ही सूरज दिखाई देंदा है, थानू सारी लहरां दे इक्को ही सागर दिखाई देंदा है, थानू सारी अनेकता दे इक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे होया अगां चल के कहंदे ने, सुपन एक पर तख एक, एक समय लीने हो। हे गुरु अमरदास तुसी जागदे रहिंदे हो, एक दे च लीन रहिंदे हो, पर जब तुसी सौ जांदे हो तुहानू सुपने भी एक दे ही आउंदे ने, तुसी सुपनियां दे च भी एक दे च लीन रहिंदे हो। थोड़ी जागृत अवस्था एक नाल जुड़ी हुई है, थोड़ी स्वपन अवस्था भी एक नाल जुड़ी हुई है। सुपन एक पर तख एक, एक समय लीने हो, तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेणियो। ये सारे हिंसे जमा करने पैणगे, जोड़ करना पड़ेगा। तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेणियो, तीस एक इकती पंच छत्ती ते पैंती इकहत्तर। हे गुरु अमरदास ये अवस्था थोड़ी इकहत्तर वरे की उम्र दे बनी, इकहत्तर साल की अवस्था दे ऐसा जीवन आपनू नसीब होया। तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेणियो, इको जे लाख लखो अलक है एक एक कर वरनेओ, गुरु अमरदास कब भल भण तू एक लोड़े एक मन्ने। कवि फल भट्ट कहिंदे ने हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा थानू एक दी लोड़ है तुसी एक नू मनदे हो एक नू वेखदे हो एक नू बोलदे हो एक नू पढ़दे हो और एक नू मन दे च वसाया थोड़ी जागृत अवस्था दे च इक थोड़ी स्वपन अवस्था दे च वी तुसी इस गल नू समझ लिया कि एक वस्तु बूझे तो होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना एक नू कोई समझ जाए एक नाल कोई जुड़ जाए ओही पवित्र है बाकी कोई पवित्र नहीं क्योंकि उन्हों सारिया लहरां दे सागर दिखाई देगा उन्हों सारिया किरणा दे सूरज दिखाई देगा उन्हों सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा उन्हों सारे पशु पक्षियों दे ईश्वर दिखाई देगा जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप ए विश संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया ये अवस्था जिसकी बन जाए ओही पावन है ओही पवित्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने तू एक होंदा होया अनेक है और अनेक होंदा होया एक है अनेकता तेरा खेल है अनेकता तेरा तमाशा है ते बस मैं यही तमाशा देखन लिए आया मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा अजीब है तेरा तमाशा देख रहे हैं। एक सूफी का कहना है जो हंस रहा है सो हंस रहेगा जो रो रहा है सो रो रहेगा सकूने कलब से खुदा खुदा कर जो कुछ के होना है सो हो रहेगा उसका तमाशा है इते होवेगा तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसी अनेकता दे जिसनू एक दी समझ होवे एक दिसे एक रसना ते आ जाए एक हिरदे च बस जाए वो ते पावन है वो ते पवित्र है बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्तु बूझे कहोवे पाक बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक एक तो गुरबाणी आरंभ होती है सारी गुरबाणी एक दा ज्ञान करांदी है जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी ओही भगत ओही संत ओही फकीर ओही वली अल्लाह ओही अवतार ओही महापुरुष और ओही पावन ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इस खंड की विचार सरवण करदे आ आप नू एक दी समझ पवे और सिर्फ समझ ही ना पवे सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ सड़ी झोली दे पै जाए। साहिब रहमत करन सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। सारे दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बड़े टिकाओ नाल एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नू जहे सरवण कीता कल फिर इसी समय दास आप जी दे चरण परसेगा। पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण करांगे उस तों बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा। साहिब रहमत करन इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.

तो फिर गुस्ताखी में आप कह देना, अगर अजय तक ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रगट होया तो फिर साडा भरोसा डोलदा है, विश्वास डोलदा है। अजय तक भगवान की झलक नहीं मिली तो भरोसा डोलदा है। बहुत छोटिया छोटिया गल्लां करके लोगों के भरोसे डोल जाते, बहुत छोटिया छोटिया घटनावां नाल मनुख के निश्चय डोल जाते, बहुत छोटिया छोटिया गल्लां मनुख के विश्वास दे दराड़ां पा देंदियां। जां के रिदे विश्वास प्रभ आया, तत्थ ज्ञान ते समन प्रगट आया, चलो उस ते विश्वास करिए। इहदे वास्ते भी ते कोई प्रेरणा चाहीदी है ना, कुछ ना कुछ ते प्रेरणा चाहीदी, विश्वास करन वास्ते भी ते कोई प्रेरणा चाहीदी है। ओही सतगुरु कह रहे ना, अगांकु तरांग अगे वेख। मैं फिर अर्ज करा, बचपन जवानी बुढ़ेपे तो अगे की है काल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं काल दे अर्थ मौत ने, काल दे अर्थ समय, समा सब नु मिटा देंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं परमात्मा नु तू बाद देच मन, बाद देच कबूल कर, पहला मरण कबूल। रब दी गल छड बाद देच देख, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ास, क्योंकि अकाल तो पहले काल है। अगां को उतरांग, दृष्टि अग्गे रख। काल तेनू रोज रोज घटा रहा है, घटा रहा है। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मनुख रोज रोज छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अज दा दिन लंघ गया, लोकी अपने नाल जोड़ देना सी, एक दिन वड्डे हो गए। बच्चे अपने नाल जोड़ देने, एक दिन वड्डे हो गए। मां बाप जोड़ देने, ये वड्डा हो गया एक दिन। अपने नाल भी जोड़ देना, अज दा दिन सानू वड्डा कर गया, एक दिन वड्डे हो गए। गुरबाणी ऐसा नहीं मनती, हर दिन तेनू छोटा कर रहे। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पाने। एक टुटे घड़े दे च एक बूंद पानी दी निकल रही है, पानी वध रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। जे 100 साल जीवना है, किसी ने अज दा दिन लंघिया तो एक दिन ते घट गया। मनुख रोज रोज छोटा हो रहा है। किसी नूं कहिए तो एक दिन अज छोटा हो गया। इनू अपशगन मन देन, अशुभ मन देन, पर इत सच्चाई है। एक दिन तू अज छोटा हो गया, गुरबाणी ये कह रही है। जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक ना जाने जे दिन दिन औद घटत है। तसली देंदा है अपने आप नूं, बार दे सिलसिले नूं देख के मैं वड्डा हो रहा, नहीं तू छोटा हो रहा है। हो सकदा है तेरा परिवार वड्डा हो रहा होवे, पर तू छोटा हो रहा है। हो सकता है तेरा कारोबार वड्डा हो रहा होवे, पर तू छोटा हो रहा है। हो सकता है तेरिया मैल माड़ियां वड्डियां हो रही वन, पर तू छोटा हो रहा है। वड्डा होंदा कारोबार, वड्डा होंदा अपना परिवार, वड्डे होंदे साजो समान नु वेख के मनुख भुलेखे च पै जांदा है, मैं भी वड्डा हो रहा, तू छोटा हो रहा। परिवार वड्डा जरूर हो रहा है, तू छोटा हो रहा है। कारोबार वड्डा जरूर हो रहा है, तू छोटा हो रहा है। इस वड्डे होने नु देखेगा तेरी दृष्टि काल ते नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ते जेदी निगाह काल तक ही नहीं गई, अकाल तक किस तरह जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अगांकु तरांग, पिछा फेर ना मोड़ड़ा। ठीक है, शताब्दियां चल रही ने, इस दास की भी काफी मसरूफियत है। दो दो दिन, तीन तीन दिन वक् वक् शहर भज दौड़ जा रही है। गुरु ग्रंथ साहब की शताब्दी 400 साल, गुरु ग्रंथ साहब की ने ज्ञान दे सागर। इस ज्ञान नु समझना ते जिंदगी दे धारना, यही शताब्दी मनानी है। और किस शताब्दी बनाओगे? और किस ढंग शताब्दी

नानक दे कर हथ परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दा शहादत दा दिवस समुचे सिख जगत अंदर श्रद्धा भावना नाल मनाया गया है। आओ बख्शे हुए समय अंदर रह के सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हजूर दी अमृत गुरबाणी नूं आधार बना के कुछ विचारां आपस विच आपां सांझियां कर सकीए। आप समूह साध संगत बख्शो आसीस। गुरु तेग बहादुर जी अपनी कृपा आप वरतान, अंदर दा टिका बख्श देन। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दी जो अमृत गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर आपां पढ़ने और विचारने हां, ए अमृत बाणी तन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दा अपना अंदर अपना हिरदा अपना परम आपा है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने शहादत दा जाम पीता है। हजूर दे नेत्रां दे सामने तीन गुरसिख उन्हां ने शहादत दा जाम पीता। ए भी अमृत बचन धन गुरु कलगीधर जी दे असी हुणे सरवण कर रहे सी, जो गुरु तेग बहादुर जी ने कर दिता वह कोई नहीं कर सकया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी मुताबक सिखी दे अंदर इबादत बंदगी सिमरन

है जिस वृक्ष दियां जड़ां विच ताकत है फल तक भी ओही पहुंचदा ते रस भी ओदे फल विच भरदा ते जिस दियां रुख दियां जड़ां ही कमजोर ने उन्हें फल तक किथे पहुंचना है जिस मकान दियां नीयां मजबूत ने ओही कलश तक गुंबद तक पहुंचेगा ते जिस दियां नीयां कमजोर ने ओ कदी छत तक भी नहीं पहुंच सकदा ओदा हर वेले खदसा है कि किते टह ना पै। बस प्यारियो जिस दे अंदर परमात्मा दी बंदगी दी जड़ है बंदगी दी नीह है ओ शिखर ते पहुंचदा है शहादत दा कलश भी ओनू मिलदा है ते गुरमुखो शहादत दा फल भी ओनू मिलदा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी विचो सी देखने हजूर दा परम आपा है बाणी। रात भी एक अर्ज कीती सी कल मौत दा भय सब तो वड्डा भय है इस संसार अंदर। वड्डे वड्डे ऋषि मुनि धर्मात्मा लोक जदों मौत सामने आउंदी दिस दिए ते अक्सर बंदे ओ अंदरों थिड़क जांदे ने। मौत इतना भय है कि कई बारी लोग अपने सिद्धांत दी बली भी मौत तो डरदे हुए मौत उत्तों सिद्धांत दी बली दे देंदे ने पर परमात्मा दी इबादत भी जुड़े हुए परमात्मा ते भरोसा करन वाले याद रखो कि सिद्धांत दी खातर अपनी जान दी बली दे देंदे ने। फिर इस बेनती नूं समझियो थोड़ा जिहा कि मौत इक भय है हर बंदा मौत तो तरिंदा है ते जदों मौत सामने दिस दिए वड्डे वड्डे सिद्धांत दी व्याख्या करन वाले ईमान दी गल करन वाले धर्म दियां परिभाषा निर्धारित करन वाले लोग मौत नूं सामने देख के अपने धर्म दी अपने सिद्धांत दी अपने अकीदे दा बलिदान दे देंदे ने। पर सही धर्मी तां ओ है कि जेड़ा अपने अकीदे अपने धर्म अपने सिद्धांत की खातर अपने तन का बलिदान दे देता है। यही कारण कि गुरु कलगीधर जी का वह बचन जो दिल्ली के गुरु घर खास करके इतिहासक स्थाना ते पढ़िया जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी ने साधन खेत इति जिन करी शीस दिया पर सी ना उचरी। शीस दे दिता अपना तन दा ठीकरा पान दिता पर सी ना उचरी। ए पावे सी शब्द दो अखर ने एक अखर ते एक मात्रा है पर इस सी शब्द पिछे बहुत वड्डी बंदगी है। सानू कंडा चुभे ते सारी रात खाए खाए ते सी सी करने आ पर गुरमुखो जिन्हां दे सीस उत्ते तेग चले आरा चले उन्हां दे अंदरों सी निकलन दी थां केवल परमात्मा दा नाम निकलना सी नाम उचारण करना ये बहुत वड्डे अंदर दी कमाई अंदर दी बंदगी दी गल है। सीस दिता पर सी नहीं उचारण कीती ते एक बचन जिथे सी नहीं उचारण कीती हाय नहीं उचारण कीती अंदरों डोले नहीं उथे नाल एक बचन होर सी पढ़ने हैं कि धर्म खेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर ना दिया। बाणी विच असी गुरु तेग बहादुर जी दे बचना वल भी आने हैं उन्होंने सी नहीं उचारण कीती ते सिर भी नहीं दिता। सिर दा अर्थ करांगे अंदर दी दृढ़ता अंदर दी अडोलता। सिर तां दे दिता क्योंकि शरीर नाशवान है अज नहीं कल नहीं एक दिन इन्हे खत्म हो जाने पर जेड़े अंदर दे सिद्धांत ने जेड़ा सच ते पहरा गुरु तेग बहादुर जी ने दिता याद रखो शरीर चला भी गया पर उस सच दे सिद्धांत की गल अज आपां भी कर रहे पए। साहब गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्होंने ना सी उचारण कीती ते ना गुरु तेग बहादुर जी ने अपने अंदर दा सिर दिता। फिर उस प्रकरण वाला कि मौत एक भय वे मौत तो बंदा डरदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच
कई थावां ते उहदा

0: ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰ ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸੱਡ ਕਰੈ ਕਬਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਭੈ ਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸੱਡ ਕਰੈ ਨੇ ਕਰਿਆ ਘਰ ਆਓ ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਨੋ ਨਾ ਡਰਿਆਓ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਬਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਰਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਬਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਪਏ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਲ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਹਲੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵੇਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸੋਹਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਕਿਹਾ। ਮੌਤ ਹੈ ਡਰਾਵਨੀ, ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੀ ਏ ਪਰ ਸੋਹਲਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਏਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸੱਦਣ ਖਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹੇ ਅਵਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਲਾ। ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਦੀ ਤੁਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਲਾ। ਜੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਸੋਹਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੋਹਲਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੁਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਡੋਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਆਸਨ, जिथे असी विश्राम करने हैं उहदे लई भी शब्द वरतने आसन। पर हजूर ने जिथे बाहर बैठन वालियां थावां लई शब्द आसन वरते है उथे कृपालू दाता जी ने इस खिरदे दे भी आसन की गल की है। कहन लगे कि जिस बंदे दे अंदर परमात्मा दा सिमरन है उहदे अंदर वाला आसन कदी भी डोलदा नहीं, वो नेचल हो जाता है। गुरु जी दे बचन कि प्रभ कै सिमरन नेचल आसन, आसन चलाए मानी आसन टिके है। प्रभ कै सिमरन नेचल आसन ते नाल बख्शिश कीती उहने प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। जे आसन नेचल है ते उस नेचल आसन विच ही अंदर दा खेड़ा। सतगुरु दी बाणी विच हजूर दे अमृत बचन ने अडोलता कित्थों मिलदी, क्योंकि शब्द सी जां सिर डोले नहीं असी सारे वरतांगे। पर गुरु जी नूं पुछिए ये सारी दात मिली कित्थों। गुरु जी दा एक अमोलक बचन हुंदा कि अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मन तानी डिगै ना डोले दृढ़ कर रहे हो। अमृत नाम, नाम अमृत जिहड़ा कीमती हीरा है, अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मन तानी डिगै ना डोले दृढ़ कर रहे हो। पूर्ण होए तृप्तानी अडोलता तां जदों नाम नूं दृढ़ कीता। तीसरा बचन बाणी विच्चों हजूर दे अमृत बचना विच्चों कहन लगे मन ना डिगै तन काहे को डराए। मन ना डिगे ए है सिर, मन ना डिगे ए है सी उचारण ना करना। मन ना डिगे तन काहे को डराए, जे मन अडोल है ते तन दे डरावे तन दे भय तू क्यों दई जा रहे है, ते मन अडोल किवें होया। चरण कमल चित रहो समाहे, जदो परमात्मा दे चरण कमलां विच उहदे नाम विच अंदर वाला चित लग गया ते अडोल हो गया। फिर गुरमुखो इस नाम दी अडोलता विचों संसार दियां वापर दियां घटनावां कदी भी मनुखी तन उते अपना असर नहीं, मन उते अपना असर नहीं पांदियां। जिवें गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी वल असीं थोड़ा जिहा आईए, सतगुरु ने कहा बंदे दा मन खिन खिन वंचलित हो रहा है। खिन खिन ए मन उड़दा है दौड़दा है किवें महाराज? कहन लगे सब तो पहली गल जो गुरु तेग बहादुर जी ने सानू कहा ते मैं उं समझना कि श्री राग माझ विच हजूर दा बचन नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दे गौड़ी राग विच तन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे अमृत बचन प्रारंभ हुंदे ने। ते जो कुछ पहले शब्द विच गुरु तेग बहादुर जी ने कहा सच जानो उहनू अपनी जिंदगी विच उहनां ने कमाया हंडाया, ते केवल अंतर आत्मे नहीं उहनू कमाण तो बाद दिल्ली दे चांदनी चौंक विच संसार नूं भी दिखा के गए कि जीवन आ है। क्योंकि जो क्या उन्होंने अपनी जिंदगी च कमाया है। कुछ विद्वाना ने हजूर दे जीवन लिखदिया एक घटना कोट कीती है, एक साखी रूप कह लिए जां गाथा रूप, भावे वह कई कई वक् वक् कोई किसी संत नाल किसी महापुरख नाल जोड़द, पर इनू कोट कीता कुछ विद्वाना ने, पर गल समझ वाली ते है तो सब नू पता होना कि माई गुरु तेग बहादुर जी दे चरणा चिक आई। उन्हें इको गल कही महाराज मैं अपने पुत्र नू मथा टिकाण आई हां, इहदे बदन ते इहदे तन ते फोड़े फिंसियां बहुत निकलदे। महाराज जी ने कहा क्यों? कहन लगी ए दिन रात जदों भी किते असी अखों ओले हुंदे आ ये मिठा बहुत खांदा है, गुड़ बहुत खांदा है। हजूर ने कहा चार दिन बाद आयो। गल सिर्फ समझन वाली है, चार दिन बाद तुहानू एक नुकता दसांगा ये गुड़ छड जाएगा। चार दिन बाद आए ते मत्था टेकिया, हजूर ने सिर्फ इन्ने कहा, कहन लगे बेटा गुड़ ना खा, गुड़ खान नल मिठास नल तेरे तन नू खेद हुंदा है। ते माई ने कहा महाराज ये चार दिन पहला भी तां तुसी कह सकदे सी, मैं सोचिया शायद कोई दवाई शायद कोई औषधि दोगे ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈ, ਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਚੱਖੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਖੰਡਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਖਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ? ਬੰਦੇ ਕੁਕਰਮੀ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਖੰਕਾਰੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਖੋ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ, ਪਰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਵੀ ਮੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖਾਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਖਾਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ! ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਧੋ ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂ ਤੇ ਐਨਸ ਪਾਗੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਜਨ ਨੇ, ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਦੁਰਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਅਧਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੰਯਮ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ, ਜੋ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਲਾਇਆ, ते एक गल जिहड़ी उन्हां कही, कहन लगे काम क्रोध ने परसना ते की सी कि गुरु तेग बहादुर जी दे अंदर कदी एदा फुरना भी नहीं उठिया। कहन लगे ही कारण कि गुरु तेग बहादुर जी दे आरंभक जीवन विच 44 साल दा ब्रह्मचर्य मिलदा है, क्योंकि जेड़ा बंदा बंदगी करदा वो मेरी इस बेनती नूं समझेगा। ग्रिस्त इंद्रियां दे विषय भोगण दा नाम नहीं, जिदे अर्थ आपां अजकल करने हां कि गुरु साहिब ने सानू ग्रिस्ती नूं कहा सब कुछ माफ। ओ भाई सजणो, ग्रिस्ती दा अर्थ मरदे दम तक इंद्रियां दे सुख भोगने विषय वासना विच प्रविरत होण दा नाम ग्रिस्त नहीं। ग्रिस्ती तां ओ वे कि जिहड़ा अपने घर विच रह के भी इन्ना संजम करे कि 44 साल तक उन्हां दे जीवन विच ब्रह्मचर्य दी झलक पैंदी है। हुण जे असीं इहदे अर्थ, क्योंकि असीं हर गल दे कई वारी अर्थ उल्ट कर लग पैंदे आ, जी इह तां गुरु जी ने बाणी च होर भी शब्द कहे इहदे अर्थ की ब्रह्मचर्य दे, नहीं उहदा हठ नहीं है, उत्थे धक्का नहीं, उत्थे नाम विच रस ही इन्ना आ चुका है कि जेड़े लोग काम दे रस विच परविरत ने ओ की जानन, जेड़ा नाम दे रस विच परविरत है ओनू ही पता है कि नाम दे रस वर्गा होर संसार विच कोई रस नहीं। सतगुरु जी उन्हां दे अंदर खिन मातर भी ये फुरना नहीं, ते बाणी विच हजूर ने जेड़ी ग्रिस्ती दी परिभाषा दित्ती ओ है ही है। कई वारी असीं विचारे आ सो गिरही जो निग्रह करे, ग्रिस्ती होवे जेड़ा अपनियां इंद्रियां ते काबू पाए संयम विच जिंदगी जीए। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे, देते एक निग्रह किवें होवेगा, संयम किवें रखिया जाएगा, हट करके जेड़े लोग संयम रखते ने उन्हां नूं तां बाबा जी ने बाणी विच कहा, कहन लगे बिंद राख जो तरिया भाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई। इस नुक्ते नूं देखो, सो गिरही जो निग्रह करे, पर किवें निग्रह करे, किवें इंद्रियां ते काबू पाए, वो तां काबू पाएगा जप तप संयम भीख्या करे, जिदे कोल जप है, जिदे कोल साधना है, जिदे कोल नाम दी कमाई है, जप तप तो बाद ही संयम है। ते जे संयम पहला वर्तन लग जाएंगे, क्षमा करो कई बारी कुछ बंदे संयम दा खोका देने वाले तिलक दे नजर आउंदे। यही कारण कि ज्यादा थावां ते बाणी विच संयम शब्द जप तप तो बाद वरत्या है। जप तप संयम भीख्या करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नी। हजूर गुरु तेग बहादुर जी ने बचन किया कि साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते एनस भागो, सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना। हुण आ शब्द सुख नू ते दुख नू एक बराबर जाने ते नाल मान और अपमान नू, सुख नू बर्दाश्त कीता जांदा है पर दुख बंदा स्वीकार नहीं करदा, मान नू सत्कार नू स्वीकार करदा है पर अपमान अंदरों लैण वास्ते तैयार नहीं, अपनी उस्तत नू कबूल करदा है पर अपनी निंदिया एदे तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। सतगुरु गुरु तेग बहादुर असी तां सिर्फ वाजे ते शब्द गा सकने हां ते बाहां खला के प्रमाण दे के कथा कर सकने हां, पर यह किन्ना उच्चा संतुलन है जिथे सुख भी असर नहीं करता पिया ते दुख भी असर नहीं करता, जिथे मान भी असर नहीं करता ते अपमान भी नहीं करता, जिथे उस्तत भी अंदर नूं थिड़कन नहीं देंदी ते गुरमुखो जिथे निंदिया भी अंदर उदासीनता नहीं आउंदे। हुण इत्थे सिर्फ दोक बचन खोल, सुख और दुख, मान और अपमान, उस्तत और निंदिया, हजूर दे सामने उस वक्त दे लोकां ने की अपमान करन दा यतन नहीं कीता, सिर्फ दोक प्रमाण दे देना, क्योंकि जो गुरु जी ने कहा उन्हां जिंदगी च खंडाया। गुरु तेग बहादुर जी ते गोली चली, आप सारे जानदे हो ओ कादी खातर चली, जदों पता लग गया कि गुरु तेग बहादुर समर्थ गुरु ने गुरु तेग बहादुर जी ही इस तख्त दे वारस ने मक्खन शाह ने कह दिता गुरु लादो रे। ते उस वक्त संगता ने पिटावां रखियां ढेर लग गए। ते शीए मसंद नू कह के धीरमल ने गोली चलवा दिती। ते गुरु तेग बहादुर जी दा परम आपा की से, जेड़ा बंदा गोली चला रहे हैं उहदे लई शब्द इक्को वरतदे पए ने कि भले धीरमल भले जी भले धीरमल तील परमात्मा तेरा भला करे। ओ धीरमल तेरे अंदर नू शांति बख्शे। कि मक्खन शाह दे कोल असला नहीं, कि मक्खन शाह दे कोल फौज नहीं, कि मक्खन शाह दे कोल आदमी नहीं। ते जदों मक्खन शाह सब कुछ ओहदे डेरे दा लुट के जो कुछ लै गया सी वापस लै के आउंदा है, ते गुरु तेग बहादुर इक्को गल कहिंदे ने मक्खन शाह इस माया दे ढेर ने गोली चलवा दित्ती, फिर तू वापस लै के आ जा, जो कुछ लियांदे इहनू वापस कर दे। मैं इत्थे इक बेनती जरूर करनी चाहना, सिख संगत चंगी तरह जानदी है गुरु तेग बहादुर कहन लगे आपां बंदगी दी इबादत दी नाम दी गल करने आ। कहन लगे जिस ढेर ने ठग लेने इहदा मतलब इह ढेर माया दा बंदगी ते प्रभाव पा गया। सतगुरु ने बाणी च बचन भी कीता है गोली चलनी। ते दूसरी मैं एक बेनती खोर करनी फिर अगा बाणी विचों हजूर दी रचना विचों। सतगुरु दा बचन एक आउंदा है बाबा फरीद जी दा, आ जितनी बनस्पति है इहदी हरियावल दा कारण पानी है। जदों किते मीह ना पए ते जमीन दे उपर उगे हुए जिहड़े रुख ने वह मुरझाने शुरू हो जांदे ने, ते उहनां दे पत्ते सुकदे ने, तने टाहणियां सुक जांदियां ने। ते जे पुछिए भी रुख बड़ा कीमती सी सुक क्यों गया, कहन लगे इस करके सुक गया क्योंकि इहनू पानी नहीं मिलिया, पानी तो बिना सुक गया, पानी मिलेगा ते जरूर खरा हो जाएगा। जेठ विच खाड़ दी लू ने सुकाया, सौण विच मीह पिया, ते बस दिन दोक लंघे जिथे चार चबेरे खुशकी सी साड़ा सी सोका सी वो सारी दी सारी बनस्पति टहकन लगी, खरियावल आ गई, ओही फुल ओही पत्ते झूमन लग पे। पर इना कु मीह पै गया कि भादों का महीना चढ़िया मीह पई जा रहा है। जेठ हाड़ विच भी सुके सन रुख, सौण विच हरे हुए, ते भादों विच झाती मारी वो फिर सुक गए। ते पुछे उन्हें हुण की भाणा वापर गया, हुण तां इन आंदियां जड़ां विच भी पानी है, पानी तो बिना तां सुके, हुण पानी होण दे बावजूद जिन्हें खरियावल दित्ती ए पानी दे खुंदियां क्यों सुक गए, हुण कदों हरे होणगे। ते अगो गुरु जी ने उत्तर दिता कि पानी तो बिना सुके ने, ते गुंजैश सी कि मीह वरसेगा ते पानी तो बिना सोका पानी नाल चला जाएगा, पानी खरियावल पैदा करेगा। जेड़ा पानी दी अणखोंद करके सुके वो खरा हो सकता है, पर जेड़ा पानी विच रह के सुक जाए उहदी कोई आस नहीं कि दोबारा कदी खरा हो सके। हजूर ने फुरमाया कि बाणी ते नाम दी अणखोंद करके असी कह सकने आ बंदे दा अंदर सुक गया, बंदे दा अंदर खुशक हो गया, बंदे दा अंदर तारकी केवल हो गया। बाणी तो बिना इंसान दा अंदर सुक जाए, बाणी मिले ते खरियावल आ जाएगी, भावना पैदा हो जाएगी। ते भाई सिखो जेड़ा बाणी विच रह के सुक जाए, जिथे बाणी विच माया वापर जाए उहनू कित्थों आपां जाके हरिया करांगे। सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता, कहन लगे तत्ती तोए ना पलवै, जे जल टुब्बी दे, जेड़ी पानी विच सुक गई धरती जिन्ना मर्जी उहनू डोबी रखो उहने खरी नहीं खोणा। तत्ती तोए ना पलवै जे जल टुब्बी दे, फरीदा जो दुहागण रब दी चूरेंदी चूरे, जिन्ना दा बाणी तो नाम दी गल करदिआं वी अंदर सुक्का रह गया गुरमुखो, केड़ी थां तो आस करने आ खरे खो जाणगे। हजूर ने कहा आ माया सी, ए प्रभता सी जिन्हें गोली चला दित्ती। उस तो अगे दूसरी गल चली क्योंकि भाई साहब ने कहा अज दे संदर्भ विच भी जरूर, हजूर अमृतसर गए ने, कि मत्था टेकन दिता गया कि नमस्कार करन दिती गई। गुरु साहब ने चार दरवाजे जिस गुरु तेग बहादुर जी दे सत्कार योग दादा जी ने गुरु अर्जुन देव जी ने दरबार साहब दी इमारत बनाई चार दरवाजे बनाए कि सारे भिन्न भेद मिटा के कोई भी सिजदा कर सकता है। पर वक्त हो जाया कि वो लोग उस थां ते काबज हो गए जिन्हें चार चफेरे दे लोकां नूं सद्दा दिता जिसने बनाया सी ओदी जोत नूं ही मत्था टेकन ना दिता गया। गुरु तेग बहादुर जी नूं मत्था टेकन दिता गया, दरवाजे बंद कर दिते गए ते उन्हां दे दादा जी ने स्थान बनाया ते दरवाजे बंद करने वाले कौन सन? मसंद बिरती वाले लोग ते ओ बिरती के जेड़ी केवल माया दे ढेर ते कब्जा करना चाहती सी। धर्म की गल तो बंदा प्यारे रड़े विच खलो के भी कर सकदा है। असी भुलेखे विच आ कि साडी मैनेजमेंट आवेगी, साडा प्रबंध आवेगा जां फलाने दा प्रबंध है तां इन्ना कुछ होवेगा। जिन्हें धर्म नूं कमाना है वो जंगल विच खलोता भी मंगल ला सकदा है, जिहदे कोल धर्म नहीं चेते रखो मंगल विच बैठा होया भी जंगल बना देंदा। हसूर ने बड़ा प्यारा एक बचन कह मो कह के थोड़ा जग्गे तुरना की अपमान नहीं। जे दुनिया की नजर विच देखिए ते दरवाजा बंद करना एक अपमान पै कर देने, पर गुरु तेग बहादुर जी बाहर बैठ गए, उन्होंने सिर्फ इको गल कही ते मेरा ख्याल वो जो कही वो हकीकत कहे। कह लगे नह मसंद तुम अमृत सरिये। अमृत सरिये मीन्स सारे अमृतसर दे वसनीक नहीं। याद रखियो उस इलाके विचों माइया भी सन जिन्हां ने चरना ते मत्था टेक के महाराज बख्श दे ते गुरु ने उन्हां नूं ए भी कहा सी माइया रब रजाइया। नह मसंद ते शब्द मसंद है जिहड़ा काबज है। नह मसंद तुम अमृत सरिये। अमृतसर विच मसंदी पुना करन वाले हो तुसी मसंद नहीं। तृष्णा अगन ते अंतर सड़िए, तुहाडे अंदर दी तृष्णा ने तुहानूं साड़ दिता है। चाहीदा सी तुसी अमृत सरोवर नेड़े रहिंदे आ ठंडे हो जांदे, पर बदकिस्मती तुहाडा अंदर झुलसदा पिया है। इत्थे भाई साहब दी एक रचना कह के भाई गुरदास जी दी सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना ये सिर्फ दुखांत जां अपमान दी गल। फिर मैं सुख दी गल भी करनी चाहना कि जो गुरु जी ने क्या उन्हूं कमाया भाई केवल टारा नहीं दितियां। भाई साहब भाई गुरदास जी दी रचना क्योंकि वह बाणी दे कई शब्दां दी व्याख्या अपनी रचना विच करदे, उन्होंने बचन किया है कहन लगे किते थां अग लग जाए ते आदमी दौड़ के पानी वल जांदा है। जिस्म नूं अग लग जाए, घर नूं अग लग जाए, किसे संपत्ति नूं अग लग जाए, बंदा पानी वल दौड़दा है कि पानी दा प्रबंध करो अग बुझ जाए। बाहर अग लगे ते असी दरिया नदी तालाब दा पानी लिया के अग बुझाने आ, ते जेड़ा बंदा तालाब विच्चों पानी लैण जाए ते तालाब दियां लहरां विच्चों अग लग जाए उहनूं कित्थों बुझावांगे? बाहर दी अग पानी नाल बुझेगी, पर नदी विच नाव ते बैठे आ, जे नदी दा पानी अग बन लग पै भाई सिखो कित्थों आस कर दे अग बुझेगी? एक आदमी उहदे पिछे कुछ उहनूं मारन वाले लोग उहदे दुश्मन पै गए, उह दौड़दा है ते कहिंदा उह सामने बादशाह दा किला है, बादशाह मेरी रखवाली करन वाला है, बादशाह मेरी हिफाजत करन वाला है। जे उह दौड़ के अपने दुश्मन तो बादशाह दे किले विच जाए जिहदे तो जिस्म दी हिफाजत भालदा है, जे किले विच आए कोई बंदे नूं बादशाह ही सिर कलम कर देवे, जिन्हें शरण तकी उस शरण पालक ने शरण देन दी थां अपने कोल आए कोई नूं कतल कर दिता, फिर किहदे किले दी आपां आस करने आ? चोरां तो डरदा होया बंदा कदी पहुंचदा कि राजे दे कोल इंसाफ लैण कि मेरी जेब कतरी गई, मेरे घर नूं चोरां ने चोरी करके लै गए। वो भाई चोरां दे फैसले कराने लई राजे कोल जांदा है, ते जे राजा ही जांदिया सार उस बंदे दी जेब कट लै कदों आस करेगा? तीन बचन भाई साहब ने कह ते गल उन्हां फिर खास करके धर्मशाला दी गुरुद्वारे दी कीती। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕਹਿ ਨਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਲਾਗੈ ਆਗ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਬੁਝਾਈਐ ਬਾਹਰ ਤੇ ਭਾਗ ਓਟ ਲੀਜੀਅਤ ਕੋਟ ਗੜ ਗੜ ਮੈਂ ਜੋ ਲੂਟ ਲੀਜੇ ਕਹੋ ਕਤ ਜਾਈਐ ਚੋਰਨ ਕੋ ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਸ਼ਰਨ ਗਏ ਨਰਿੰਦ ਮਾਰੇ ਮਖੀਪਤ ਜੀਓ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਬਚਾਈਐ ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈਐ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਵਾਲੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਬਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਡਰਪਤ ਡਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈਐ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਰਲੇਪ ਨੇ। ਆਹ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੇ 32-34 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹਾਂ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਬਰ ਜੇ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ 1-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਖੁਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ 34-32 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਉਮਰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 4.5 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਵਾਪਸ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 68 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂਤੇ ਐਨਸ ਭਾਗੋ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ काम क्रोध जै परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवास। जिदे ते दुख भी स्पर्श ना करे, सुख भी स्पर्श ना करे, सोने का भी प्रभाव ना पे ते मिट्टी भी नजर, सोना भी मिट्टी नजर आए, पुस्तक ते निंदिया का कोई प्रभाव ना पे, हरक ते सोग का प्रभाव ना पे, ते काम ते क्रोध ओदे अंदर नू कदी स्पर्श ही ना करे। काम क्रोध जै परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी। तो गुरु कृपा की कीती जी, ए किवें जुगत पहचानी, किवें पता लगा इस अवस्था दा? उस संबंधी गुरु तेग बहादुर जी दा रात वाला वचन मैं जरूर दोहराना चाहना। कहन लगे ए जुगत ओना ने पहचानी के जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। ए जुगत ओना ने पहचानी कि जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, खर जन खर अंतर नही नानक साची मान। जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर खर अंतर नही नानक साची मान। पर किवें मन्या, किवें ओदे नाल जुड़े? इत्थे हजूर ने कहा, कहन लगे भाई उन्होंने बंदगी की, इबादत की सतगुरु गुरु तेग बहादुर, उन्हों का जीवन सिमरन बंदगी। सूरज प्रकाश विच के भी शब्द लिखे है कि गुरु तेग बहादुर जदों कीरतपुर साहब पिता गुरु जी दे सामने आउंदे सन ते चेहरा नहीं सन चुकदे। मैं विस्तार च नहीं, सिर्फ जो नुकते ने ते मन मत वाले शब्द नहीं है। जदों आना संगत विच हजूर पिता दे चरणा विच मत्था टेकना ते पिछे बैठ जाना, बैराग विच प्रेम विच बिरहा विच, ते जे सिखां ने पुछ लिया, मात नानकी जी ने भी पुछया, साईं जी पुत्र मेरा किसे नाल बोलदा भी नहीं, क्योंकि भाई ये बड़ा जिहड़ा साका है ना, ये कमाई तो बिना नहीं हो सकता। दिल्ली विच पता नहीं किन्ने कु लोग औरंगजेब रोज मारदा सी, पर जिदन पहुंची कोई आत्मा वल हाथ पाया उदू बाद औरंगजेब दिल्ली विच एक रात भी टिक नहीं सकिया। साईं जी ना मेरा पुत्र बोलदा ना किसे नाल गलबात करदा, चुप ते शांत रहिंदा। ते सतगुरु ने उत्थे शब्द कहा सी, नानकी तेरा पुत्र अजर नू जरन विच तुरंतर है, अजर नू जरन वाला है। ते जदो कोल आए गुरु तेग बहादुर जी ने नेत्र नीवे कीते ते बांह पकड़ के अपने कोल बिठा लिया। कहन लगे लाल जी, बेटा जी तुसी नेत्र क्यों नहीं चुकते जदो दरबार विच आउंदे हो? बाहर भी देखी दा नीवी पा के रखीए, हालां पिता ते पुत्र दा रिश्ता है। ते अखां विचों आंसू भर के कहन लगे, पिता जी जिसनू अंदर दे औगण पता होण उहदे सामने नेत्र नहीं चुके जांदे हुंदे। हुण गुरमुखो ओ जप के अंदर दी अवस्था जिसनू पता होवे, गुरु हरगोबिंद साहब ने सीने ना ला के कहा, नानकी देख तेरा पुत्र अजर नू जरदा पिया है। ते किस करके मैं कहना कि इहदे घर विच जिस पुत्र ने जन्म लेना है उस जैसा ना कोई शी ते ना कोई होवेगा। माता नानकी अत दे प्रसन्न होए। साहब गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने तिलक ते जन्यू की खातर ये सारे असी कहने, इहदे विच कोई शक नहीं। तीन शब्द इतिहास ने कहे ने कि धर्म की चादर, खिंद की चादर ते सृष्टि की चादर। प्रगट पै गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै धापी चादर, कर्म धर्म की जिन पत राखी अटल करी कल युग में साखी। वो धर्म की चादर ने जिमें गुरमुख दस रहे सन, पर तिलक ते जन्यू नू खतरा सी। ते अज मैं कहना चाहना कि जिस निशान नू गुरु नानक साहब ने स्वीकारिया नहीं, उन्होंने कह दिता चौकड़ मुल अनाया बै चौंकै पाया, सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण तिया, ओ मुवा ओ झड़ पया वे तगा गया। तग कपाओ वटिए, तग कपाओ कतिए ब्राह्मण वट आए, कहो बकरा को बकरा रिणकाया सब को आख पाए, होए पुराना सिटिया पीपर पाइया होर। हजूर ने परवानिया नहीं, पर नौवें गुरुदेव दे कोल आए ते इस थां ते जिथे असीं बैठे हां इत्थे ह्यूमन राइट्स, मैं कल भी बेनती की इंसानी हकां दे लोक ढंडोरा बड़ा देंदे ने, किसे ते मुसीबत हो जाए लोग मारे जान ते टीम जांदी है देखण वास्ते कि इंसानी हकां दी खातर असीं देखण आए हां कि लोग किवें कतल कीते गए। मेरे गुरु ने कहा कि मरण तो बाद गिणतियां मिणतियां नहीं, इंसानी हक तां इह वे कि किसे ते मौत आवे उहनूं घर तोड़ के आप उहदी मौत नूं स्वीकार कर लै। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तिलक ते जन्यू दी खातर उन्होंने शहादत का जाम पीता, पर अफसोस जिस चिन्ह नूं गुरु पांदा नहीं, अकीदा नहीं, उहदी खातर एक कैम रह जाए, इहनूं हक है अपने चिन्हों का, पर अज उन्हां लोकां नूं गुरु तेग बहादुर दे बच्चियां दे चिन्ह बिल्कुल पांदी ना, उन्हां नूं कृपाण चंगी लगती है ना, खुले दाड़े वाले सिख चंगे लगते ने, किस भुलेखे च लोग जी रहे ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्हां दे शहादत वाले दिन आप सब इकत्र होए हो, सिर्फ इको बेनती है। सतगुरु ने बाणी विच बहुत कहा कि सुख मैं बहुत संगी पहे, दुख मैं संग ना कोए, जाए कह दिता सुख मैं आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिश के रह, विपत परी सब की संग छाड़त, को ना आवत नेरै। मुसीबत विच समझियो जगत मैं झूठी देखी प्रीत, अपने सुख सो ही सब लागे क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सब है कहत है कित सो बांध्यो चीत, अंतकाल संगी ने को ए अचरज है रीत। मुसीबत च कोई आंदा है? हां दुनियादार बंदे कदी मुसीबत च नेड़े नहीं टुके, पर जिस गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि सुख विच घेरे ने मुसीबत विच ही कल्ला है, सच जानो उन्हें यह भी व्याख्या करके दस दिती कि तेरे सुख विच विद्वान पंडता तेरे चार चपेरे घेरे ने, तिलक जन्यू वेले देवी देवते भी कन्नी कतरा गए, पर मैं तेन दसा जदों तेरे ते मुसीबत पई मैं तेरे घेरे तू वेख के सुख दे नूं खुश हां, भी इन्ने लोग तेरे नाल मुसीबत विच कोई भी नहीं, पर मैं ये भी तेनु व्याख्या करके दसनी चाहना कि जदों दुख आप है अपने छड़ के चले जांदे ने, पर गुरु बांह पकड़ के सिर धर दी बाजी लांदा है, पर कदी मुसीबत वेले छड़दा नहीं। ताई सतगुरु ने अमृत बाणी विच ये बचन भी कहे, शहादतां इउं कह लईए भाई सिद्धी गल, भाई साहब सियाने जानदे आ इस हिंदुस्तान विच बलियां तां बड़ियां सन, कोई देवतियां नूं बली देंदा है, कोई देवियां नूं बली देंदा है, पर शहादत जब जे हिंदुस्तान विच प्रैक्टिकल तौर ते आया है ते वो गुरु अर्जुन देव दी शहादत नाल आया है। सिखां विच दो तरह दी शहादत हुंदी है, देखो मंजिल दोनां दी इको ही है, एक सिदक ते सिरड़ वाली शहादत, दूजी हथियारबंद शहादत। इउं कह लईए एक शांतमई शहादत ते दूजी जुझारू शहादत। शांतमई शहादत विच गुरु अर्जुन देव जी ने, शांतमई शहादत विच गुरु तेग बहादुर जी ते तीन सिख ने, शांतमई शहादत विच गुरु का बाग, पंजा साहब दा साका, ननकाणा साहब दा साका, तरन तारण साहब दा साका है। शांतमई शहादत विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी दा बंद बंद कट्टे जाण दी गल है, ते जिथे जुझारू शहादत की गल हुंदी है उत्थे गुरु के वड्डे साहबजादे ने, बाबा दीप सिंह जी ने, होर अनेकां गुरु के सिख ते दोनों परवान ने। शांतमई वाले ने भी अंदर दे सिर नूं जान नहीं दिता, ते चेते रखो जुझारू ने जदों देखिया भी इह शांतमई ढंग नाल काबू नहीं आया ते फिर खंडा खड़काया है। तां ही सतगुरु जी दे इस घर दे अंदर बाणी विच दोनां नूं बचन कहे, जदों शांतमई गल आई उदों कहण लगे कबीर ऐसी खोए परी मन को भावत कीन, कोई अगे हाथ नहीं चुकिया, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिंदोरा लीन। ते जदों जुझारू दी गल चली ते उसे भगत ने कहा कि सूरा सो पहचानिए जो लड़ै दीन के खेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाडे खेत। हजूर मेहर करन तुहाडे चरणा च बेनती है साध संगत जी, तन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे शब्द नाल बाणी नाल जुड़िए, ते अपनी निजी सौड़ी सियासत तो उपर उठ के याद रखियो आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल माफ नहीं करनगियां। अपनी निजी सौड़ी सियासत तो उपर उठ के जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द दा पल्लू पकड़ो। इत्थे तां लंगर विच बैठे हुए बंदे नूं भी धक्के नहीं मारे जांदे भावे दुश्मन होवे, ते संगत विच बैठे हुए नूं गला ला के गल्लां क्यों कीतियां जांदियां ने। सतगुरु कृपा करे सानू समत बख्शे, जिन्नी कु गुरु जी ने सूझ बख्शी आप नाल विचार सांझे कीते ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
0: Satnam.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: संत कै दुखन आर जा कटै,
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटै,
0: संत कै दुखन सुख सब जाए,
1: संत कै दुखन नरक में पाए,
0: संत कै दुखन मत होए मलीन,
1: संत कै दुखन शोभा दे हीन,
0: संत के हथे को रखे ना कोई,
1: संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करै,
1: नानक संत संग नंदक मीतरै,
0: संत के दुखन ते मुख पवै,
1: संतन कै दुखन काग ज्यों लवै,
0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत कै दुखन त्रिगत जोन करमाए,
0: संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै,
1: संत कै दुखन सब को छलै,
0: संत कै दुखन तेज सब जाए,
1: संत कै दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का थाओ को नाही,
1: नानक संत भावै ता ए पी कत पाए,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक खिन टिकन न पाए,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज ते हीन,
1: संत का निंदक दुखिया अरदीन,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत के निंदा दुख मैं दुख,
1: नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा पवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लगे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा बेकारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
1: संत की दुख न सुख ते तरे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाऊ,
1: नानक संत भावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी हर बीज ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज न पहुंचे,
0: संत के दुखी को उदयान परमाइये,
1: संत का दुखी उजड़ पाई है,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सास बिना मृत की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किस नाही,
1: अपन बीजिया पे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रख न हार,
1: नानक संत भावे ता लय उबार,
0: संत का दुखी यूं बिललाए,
1: यूं जल पे हून मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: यो पावक ईंधन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: यो बवार तेरे खेत माहे दुहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत,
0: कीर्तन निंदक का तो रही पया,
1: नानक जो तिस भावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइय,
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय,
0: संत के दुखी की पूजा ना आसा,
1: संत का दुखी उठ चले निराशा,
0: संत के दुख ना त्रिष्टै कोई,
1: जैसा भावे तैसा कोई होए,
0: भया कीर्तन मिटै कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कर तिसकी हो करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: राखी उसत करहु दिन रात,
1: तिसे त्यागो सास ग्रास,
0: सब कछु वरतै तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेला करने हार,
1: दूसर कौन कहे विचार,
0: किसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे,
1: वड पागी नानक जन से श्लोक,
0: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर गाई,
1: एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पो जाए, अष्टपदी
0: मनुख की टीक बिरसी सब जान,
1: देवन को एक है भगवान,
0: जिसके दिया रह अगाहे,
1: और न तृष्णा लागे आए,
0: मारे राखे एको आप,
1: नानक कै कृष्णा ही हाथ,
0: जिसका हुकुम भू सुख होए,
1: जिसका नाम रख कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए,
1: नानक बिघन न लागे कोए,
0: उसत मन में कर निरंकार,
1: कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सहेला कर ले जियो,
0: नैनो बेग ठाकुर का रंग,
1: सह संग तन सह सब संग,
0: चरण चलो मार्ग गोविंद,
1: मिटा पाप जब ये हर बिंद,
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: अदर ज्ञान नानक उजल मथा,
0: बड़ भागी ते जन जग माही,
1: सदा सदा हर के गुण गाहे,
0: राम नाम जो करे विचार,
1: शीतल मंतगनी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा सदा जानो ते सुखी,
0: एको एक एक पुशाने,
1: ते तो तकियो सोजी जाने,
0: नाम संग जिस का मन मानिया,
1: नानक तने निरंजन जाने,
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे,
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे,
0: सात संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
0: आन दिन कीर्तन केवल बखियान,
1: मैं सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर जिस जन की आशा,
1: जिसकी कटिए जम की फसा,
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
1: नानक दस न लगे दुख,
0: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे,
1: सो संत सोहेला नहीं डुलावे,
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
1: सो सेवक को किसते डरे,
0: जैसा सात ऐसा दृष्ट आया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोदत सोदत सोदत सीजे आ,
1: प्रसाद तत् सब पूजे
0: आ, जब देखो तब सब शमूल,
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
0: मैं किस जन मैंने किस मरे,
1: अपन चलते आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अर्ग जुग त्रच था व्यो था,
0: अवनाशी ना ही किस खंड,
1: धारण धार रहे ब्रह्मांड,
0: लख पे पुरख प्रताप,
1: आप जपाए था नानक जाप,
0: दिन प्रभ जाता सो सो बावंत,
1: सगल संसार उदरा तन मंत,
0: प्रभ के सेव सगल उदारन,
1: प्रभ के सेव का दुख विसारन,
0: आपे मेल लई कृपाल,
1: गुर का शब्द जप पाए निहाल,
0: उनकी सेवा सो ही लागे,
1: जिसनो कृपा करे बट भागे,
0: नाम जपत पावे विश्राम,
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग,
1: सदा सदा बसे हर संग,
0: सुपाई हो वैसो हो ही,
1: करने हार पछाने सोए,
0: रब का किया जन मीठ लगाना,
1: जैसा सात ऐसा दृष्टाना,
0: जिसकी उपजे तिस माही समाई,
1: सुख निदान

0: फकीर तबीयत इंसान सी, जहां आ रहा है वड्डी भैन इस बिरहा नाल बड़ा प्यार करती सी और बड़िया दुआवां देंदी सी, तो खुदा दे मार्ग ते चले हैं, खुदा तेनू अपने घर तक पहुँचावे, तेनू पूरे बोध हासिल हो गए। पर जब पता चलिया बड़ी बेदर्दी नाल औरंगजेब ने दारे नू भी कतल कर दिता। रोंदी हुई आई औरंगजेब को, पहले ते बड़ी ताड़ना की थी, मूर्खा तू ये की कीता, मासूम बेरा खुदा तरस बेरा खुदा शनास जो सी, और बड़ा फैज दिल बंदा फयाज दिल बंदा, बड़ा दानी मिजाज दा, तो उन्होंने भी मार दिता है। कहने अंदर इतना जोश आया, जहां आरा ने हाथ चुक लिया औरंगजेब नो मारन वास्ते, ए तो की कीता। औरंगजेब ने उसे वक्त उदी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया जिस कमरे दे च प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च उन्हों बंद कीता। 7 साल बिचारी जेल दे च रही है। ये काम कोई वो कर सकता है जिदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, जिदे कोल दिमाग नहीं सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हिटलर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हर नाकस जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। कितना मूड कितना चेत पशुआं नूं मात कर गया, 7 साल दे प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है। हरनाकश कहिंदा है तू जपया कर, जल हरनाकश थल हरनाकश, ताकि तेनू वेख के होर बच्चे भी जपन कि असी निरंकार करके दुनिया विच जाने जाइए। निरंकार होण दी तौफीक मनुख नूं निरंकार ने दित्ती है, ध्यान नाल सुनना। निरंकार होण दी उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दित्ती है। मनुख ऐसा जीवन चाहता है जिहदे च मौत ना होवे, ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे च ना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, उस महाशक्ति दा ना ही ते परमात्मा है, और की है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होण दी सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दित्ती है, हर एक नूं दित्ती है। किस तरह? परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं पर वेखदा। परमात्मा सुणदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पै, सब नूं वेखदा पै, सब नूं सुणदा पै, सदा सुणदा पै। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोलदा पै और उहदा बोल सारी दुनिया विच गूंज रिहा है। अनाहद ना मनुख भी सुनदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमित है। मनुख भी जानदा है पर सीमित है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होण दी इसके अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वासे जफर कहिंदा है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को देव को जिन को परी को ऊरे गिलमा को। मनुख तो वद परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना, पशुआं दा भविष्य अजे मनुख होना है। बनस्पति का भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरां दा भविष्य ते अजे बनस्पति होना है, केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी दा महीना पिछलिया इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन, अमृत वेले मैं नितनेम पिया करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 बजे ये कौन फोन करता है। दिल्ली तो एक नौजवान पूछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहां जानना, भविष्य वक्ता भविष्य जानना। कहन लगे की फिर तुसी आ रहे हो ना दिल्ली की? बाई संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुंचना सी, तुसी आ रहे हो? असी पोस्टर भरे ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहो दो ते गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देंदा, तुसी हुणे ही पूछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस देंगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार के मनुखों का एको ही भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया परेशानियां नहीं जानगी, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नू उच्चा महल मकान मिल गया बेचैनी नहीं जाएगी, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटों के अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी का धनवान होया, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर होया, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनीतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल की व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाई। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहिंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखां दा एको ही भविष्य है राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारियां नू दित्ते हुए ने, सीमित ने ये असीम हो सकते ने। उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए, पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारियां दा, और मुखी सजना दा बार बार धन्यवाद। फुल चुकदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: वेदं पारब्रह्म परमेश्वर आराधनानिक हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां विचों प्रबल कमजोरी अहंकार अहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने फिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान होमे एहा जात है होमे कर्म कमाए होमे एही बंदना फिर जौनी पावे। होमे दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वक वक जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हाँ हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थों का अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंगे, जोवन जवानी स्वपन दे आधार पे खड़ा होंगे, और शक्ति सता ताकत इसके आधार पे खड़ा होंगे। जोवन धन प्रभ ताके मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बंदी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच, धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जो बनवंत होवे या जो बंदी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता हो, दोहां हालत पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जो बन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचां देच है, विचारां देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विची अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस भी महफिल देख खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कहो कुनीन हम पंडिते, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। क्योंकि सारे भूल के पागल होए फिर देने, कौन हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होता है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होता है, क्योंकि अवगुणा के आसरे से अहंकार को अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करम, इक ना नाद ना बेद, इकद नो न किसी प्रकार की विद्या न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध अक्कल सिर, अक्षर का भयो न लहन, अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी कर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा, और अहंकारी दिया अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार की प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहते हैं, चलत कत टेढ़े अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा। अहंकारी चाहता है सारिया दगाह मेरे ते आन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेडे। तू है जी हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी और किया तू हड्डियां दा मान जोबन जवानी दा मान हड्डियां दा मान मांस दा मान मिंज दा मान और खलड़ी दा मान। इस तो अलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने कर्पूर बहुत सुगंधा परश मानक देहं मलीनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। कपूर ते चंदन जैसिया फुल्ला जैसिया पवित्र वस्तुआ मनुखी तन नाल छूंदे हां स्पर्श करदे हां मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो है कि दुर्गंध खून मिंड मांस खलड़ी। अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है, जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार। धनवंता होए क्या को गर्वे जा सब किश तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन कट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है वसीला ते परमात्मा है। पर धन का अहंकार सता प्रभता इसका अहंकार अगह चलिए अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा का सिंघासन चाहिए। दान का अहंकार ज्ञान का अहंकार सेवा का अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई ला बनाई जाता है बनाई जाता है बनाई जाता है। और गुणा के आसरे ते बैठ के कोई प्रसन्न बड़ा होता है क्योंकि जगत तो जस मिलता है जगत तो माण मिलता है। वो माण इसके अहंकार नू होर वधांदा है होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया फिर धन का त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया हूँ त्याग का अहंकार। सता कोल है सता का अहंकार सता का त्याग कर देता है हूँ त्याग का अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार फिर जो कोल है उसका त्याग किया है उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने अहंकार बैठ जाता है। दान का सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी भगवान आके बैठे निरंकार आके बैठे अहंकार आके बैठ जाता है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंहासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उहदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हर नाग कुछ ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा, कौन होंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहां दा मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक दी निगाह मेरे ते टिक है और हर एक दा मान मैं हो जावा, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, इसने भगवान का रूप बना लेता। मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ते तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं, बस तू ही। एक आलम का कहना है, अज रहा चुनार कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होगे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं, ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ने आ मस्जिद दे भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा विच भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहिंदे ने, गरूर का सिर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होकर रह जाता है। अहंकारी
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

रात से जूं कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण दा कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी के मुंह ना निकलता है, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी होए, कुछ बिगड़ना भी ना होए, ताँगी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतनी जबान पे आ जाता है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना। हां कहना ही भुल गया है, हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, ता भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसे दुश्मनी वधदे। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहिंदे ने

अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमार अरारद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जी तो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्म दर्शन।

गुरबाणी धन दस दिए, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जब उस एक नू सज्जन बना लेंदा है, कि एक नाल सज्जनता दा जब रिश्ता जुड़दा है, तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है, जीवन धन हो जाता है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मना विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ, जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नू भी मित्र बना लिया, दुष्टां नू भी मित्र बना लिया। सब मित्र सबको मीत, हम आपने कीना। पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं, अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना, साधना विच लीन है। ते साधना सारी सिर्फ अहंकार नू मारन वास्ते है, और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है, और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सदा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई, तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया, दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़ पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु कहन लगा, हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है, असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर राजा कहन लगा, आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपके दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेट है, चलो नहीं पाना, आप रख लो, दे देना किसी नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिन बाद इस त्यागी वैरागी साधु का एक मित्र, बूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु से, वो भी तपस्या कर रहा से, मिलन ले आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है, और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां विच जाना है, नाल दे पिंड। उन्होंने अपने घरां विच चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है, वी इत्थे कल्यां बैठे हां, तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो। मैं 3 घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वज दिता।
0: गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा

आंदरा रह गईयां, सुट दितियां गईयां, बाकी ते सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईयां, कम विच वर्तियां, केवल आंदरा बच गईयां। ये नदाव चुक के ले गया जो रूई पिंज देने है धुनकी दे नाल, और धुनकी दी जिहड़ी तंग लाई जांदी है वो बकरे दी आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए, ये आंदरा ही रह गईयां सन।

जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा, बस उस नाली रुई पिंजी जांदी है। जरब

उपासना एक नहीं है, इष्ट एक नहीं है, इच्छा एक नहीं है। आशा इष्ट उपासना खान पान पैरान ते खाने दिच भी सहमति हो गए। खाना हर धर्म ने कुछ खाने नो वर्जित गिने, ए ना खाओ। लंबा चौड़ा खुलासा ना करिए। कुछ साधु भारत दिच ऐसे भी ने जो दूध भी नहीं पींदे, कहंदे ने ए लिक्विड मास है, ए सॉलिड मास नहीं है, लिक्विड मास है। ए लाल मास नहीं है, चिट्टा मास है, नहीं पींदे। परहेज करते ने वो नहीं पींदे, पर बेशतर उसनु अमृत मंदे ने दूध नु। गुरबाणी कहंदी है पशु मिले चंगियाईयां खड़खावे अमृत दे, अमृत देंदियां ने गऊआं मज्जां। पर वो कहंदे नहीं, लिक्विड मास है, तरल मास है। एक ठोस मास होंदा, एक तरल मास है। कहंदे तरल मास है, आखिर मास दा निचोड़ है और की है। नहीं पींदे, बड़ा परहेज कर देना। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहंदा है खाण दे च भी सहमति होवे। ए नहीं एक आखे मेरा धर्म इजाजत देंदा इस खाने नो, एक आखे मेरा नहीं। आसा इष्ट उपासना खान पान पैरान। मैं ईसाई मिशनरी देखे ने चर्च दे च भी शराब पी लेंदे ने। उंज मैनू नहीं पता सी, रोचेस्टर इंग्लैंड दा एक शहर है, गुरुद्वारा ते चर्च आमने सामने ने, ते ईसाई जरा खुले सुभा दे आंदे ने। क्रिश्चन गुरुद्वारे आ जांदे सन, पादरी भी आ जांदा सी। एक दिन मैनू कह गए वे 10-15 मिनट आके बोलिया, ते मैं उन्हां नूं कहा मेरी इंग्लिश बहुत ढिली मठी है। कहण लगे नहीं मैं अंबाले रहा, किधरे अंबाले चर्च दिच रहा होना, अंग्रेजां दे राज दे समय बुजुर्ग है। कहिंदा मैनू हिंदी आउंदी होर बथेरियां नूं आउंदी, तुसीं उर्दू च बोलना, हिंदी च बोलना। मैं कहा चलो फिर ठीक है, कम चल जाएगा। ये खुले सुभाव दे आउंदे ने। इन्हां दा सिलसिला थोड़ा जिहा फराग दिली वाला है, बर्दाश्त जो है करदे ने। पर मैं देख के हैरान हो गया, चर्च दे अंदर बार सी बनी हुई, पी रहे सन, हद हो गई। इस्लाम हराम कहंदा है, गुरबाणी कहंदी है जिस जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए। मुख्तसर मैं अर्ज करा, तुलसी कहंदा है खाने दिच भी सहमति होवे, पीण दिच भी सहमति होवे। ए नहीं एक आखे नहीं ये दुध अमृत है, एक आखे नहीं मास है, नहीं पीना। एक मास खाई दा एक मास पीना है, मास पीना भी है मास खाना भी है। खान पान पहरान ते पहनन दे च भी सहमति होवे, पहरावा एक होवे। छे गल्लां आपस दे च मेल खान ते मित्रता हो सकती है वरना नहीं। तुलसी दे इस सलोक दे मुताबक ते ए मित्रता रूहे जमीन ते हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया दा खाना इस एक किस तरह करिए, भारत दा खाना ही एक नहीं है। बंगाली कुछ और खांदे ने, असामी कुछ और खांदे ने, पंजाबियां दा होर खाना है, कश्मीरियां दा होर है, गुजरातियां दा होर है। पिछले दिन जब 300 साल खालसा साजना दिवस मनाया गया सी, ते दास दी सेवा श्रोमणी कमेटी दी तरफों सारे भारत दे वड्डे वड्डे शहर खास करके सूबियां दी जिहड़ियां राजधानियां सन उन्हां दी सी। जथेदार साहब भी नाल सन, 4-5 जथे और 4-5 विद्वान पहुंचे सी गांधी धाम गुजरात दे। उत्थे लंगर दी मंग कर ली सी एक गुजराती सज्जन ने, भी लंगर मैं बनाना, मैनू इजाजत दिओ। तो सिंह सभा ने मंग लिया, बठीक है श्रद्धा नाल कहिंदा पिया ते चलो ये बनावे। तो अपने लांगरी भी गुजराती ले आया सी। दीवान दी समाप्ति हुई, पंगतां लगियां, अखीर दे जाके दास बैठा सी नाल होर साथी। साग सब्जियां जिहड़ियां अग्गे रखियां गईयां ना, दाल मिठी

होना कुदरती है, सियाणा भी दुखी है। निर्धन दा दुखी होना कुदरती है, धनवान भी दुखी है। बल्कि मनोचिंतक ते कहने ने निर्धन देश इतने दुखी नहीं जितने धनवान देश दुखी ने, निर्धन मनुख इतना दुखी नहीं जितना धनवान दुखी है, और निर्गुण मूर्ख इतना दुखी नहीं क्योंकि मूर्खता दा जो करके उसनों दुख दा इतना एहसास नहीं आता जितना कि सियाणा दुखी है। चिंतक दुखी है, दुख ते व्यापक है। कमजोर भी दुखी है, ताकतवर भी दुखी है। निर्बल भी दुखी है, बलवान भी दुखी है। निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है। करूप भी दुखी है, सुंदर भी दुखी है। छोटा भी दुखी है, बड़ा भी दुखी है। दुख व्यापक है। बाली रोवे नाय भतार, नानक दुखिया सब संसार। मनुखता दी झोली च इतने दुख देख के ख्याल आ जाता है किधरे गलत बीज ते नहीं बोए गए। कड़वे फलां नू वेख के कहिंदे ने दरखत दी पहचान आउंदी है, फलां तो पहचान आउंदी है। बोया की सी बीज दी पहचान किस तों होवेगी? फल तों। कड़वे फलां नू वेख के फौरन अंदाजा लगदा है बीज ठीक नहीं बोए गए, गलत बोए गए ने। अजोकी साइंस सफल हो गई है बीज देच वृक्ष वेखण देच और बीज देच फल वेखण देच। ऐसिया खुरदबीना तैयार हो गई ने, साइंटिस्ट वेख लेंदे ने इहदे च ऐसा फुल निकलेगा, ऐसा फल निकलेगा, और फुलां दा यह रंग होवेगा, फल इतने आकार दा होवेगा अगर अनुकूल धरती मिल गई। बीज देच फल वेखण देच सफल होया है साइंटिस्ट विज्ञानक, कर्मा देच फल वेखण देच सफल होया है संत भगत। उन्हों दिस पिया कर्मा दे बीज देच इहदे चों दुख निकलेगा, इहदे चों कलेश निकलेगा, इस दे चों सुख निकलेगा, इस दे चों आनंद निकलेगा। उहदे कोल अपनी दृष्टि, इस वास्ते उसने विज्ञान ने कोशिश की बीज चंगे वधिया बनाई है। तो पहले नालों वधिया बीज ने, पहले नालों चंगिया कणकां दी फसल है, फलां दी फसल है, फुलां दी फसल है, और बहुतात देच है, बड़े सोहने ढंग नाल है। अगर इस तरह ना होंदा तो इस वधी हुई आबादी की तो शायद इतनी पूर्ति भी नहीं हो सकती सी। बीज नूं वधिया करन देच साइंस का बहुत वड्डा हथ है, और साइंटिस्ट सफल होया बीज देच फल वेखण देच, संत सफल होया कर्म देच फल वेखण देच। इस कर्म चो दुख निकलेगा, इस कर्म चो सुख निकलेगा, इस कर्म चो परम आनंद निकलेगा। और ये नियम परमात्मा ने आप बनाया है। अगर कोई दुखी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, बीज ऐसा बोया गया जिस तो दुख निकले है। और जे दुख है तो फिर परमात्मा कसूरवार नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा होया है। फ्राइड ने किधरे कह दिता कि गालबन 60% बीमारियां जद्दी आउंदियां ने, मां नूं कोई रोग सी ते अगे औलाद नूं हो गया, और प्यो नूं कोई रोग सी ते अगों पुत्र नूं हो गया, जद्दी रोग। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता तेरे शरीरक रोगां लई तू जिम्मेवार नहीं, तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। ते हुण संस्कार भी शुरू शुरू च मां बाप देंदे ने, बोलना सोचना ये पहले पहले तो मां बाप तो ही मिलता है जो है मनुखी बच्चे न। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता तेरे सोग ते चिंता लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, और तेरे शरीरक रोग लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मां बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वो दोषी ने। और उसने उस वक्त ऐलानिया किया सी जर्मनी दे प्रसिद्ध डॉक्टर नू कि दुनिया दे इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्हां कोल औलाद पैदा करन दा हक खो लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया दे रोगी रोगी होणगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या, तेरे शरीरक रोगां लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: 1746 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकती। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जान्यो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने, इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है कि असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार

परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इथो तक के जमीन दे विच पैदा हुई फसल जमीन दे विच पैदा हुए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा हुए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है। प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। उह किहड़ी ताकत है ओ केड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नू चिकड़ विच खिड़े हुए नू पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहनिया उदाहरण कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक के गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है दोना दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच उह पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथो तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दिए चंद्रमा जदों ए अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आना है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका के उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं केवल ता केवल अपनी गर्दन नू चुका के अपनी पिठ ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही
पर उहदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी की रचना विचो अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन कहा, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है, ते ओ एक टिक चंद्रमा नु देख रही है। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच, एक जीव विच, एक पंछी विच भी पैदा कर दिता। एक टिक हो के चंद्रमा नु देख रही है, चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल उहदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है, ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा उहदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी उहदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी उहदी सोचण दी शक्ति नहीं, मनुख जितना वह कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं, सकून नहीं, जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे, पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की, एक टिक हो के ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम की दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने, ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे, वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते, ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पैलां पाण लग पिया, ते अपने पंख उहने पूर्ण तौर ते खिलार लै, बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जिहड़ी बदल नूं देख के खिड़ाओ विच आया ते नचण लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपीआ कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा, उदों पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणो मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे, चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है। प्यारिया
कि पानी जेड़ा वह सुख सकता है, कमल फुल मुरझा सकता है, चकवी ते चकवे का विछोड़ा पै सकता है, चमकते कोई बदल दूर जा सकते ने, मोर ते बबीए बिलकते रह सकते ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकते ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नू विछोड़ सकती है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक कैसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी है पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले, मोर बाबी ए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है मां पुत संभाले, पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है, पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निब है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभन वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्होंने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नू मुखातब करके प्यारे नू प्यार करन दे कुछ जुगतां सानू दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है, की तू बंधना तो मुक्त हो सकना है परमात्मा नू प्रेम करन तो बिना, मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है, ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए, मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकता, गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउनी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने आ, जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जेड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा, ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्याक है, मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं, ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है, जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहिया नानका जे प्रीत नहीं, भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार, मृतक कहिया नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है, उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं, ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन दी गल की, हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है, ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं, ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है, प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए, उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए, किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं, डर तां उदो है
ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆ ਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਐ ਮਿਨਸਾਨ ਤੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਕੱਟਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆ ਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾਂ, ਵਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੇ ਚੁਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬੂਦ ਮਰਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਈ ਨੂੰ ਨੇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੱਲੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਕੈਸੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਕੋਈ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਪ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਏਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਸਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਗਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਸਜਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ ਨੱਪੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the most, yeah, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत पेश।